नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक वर्षा जारी रहने का अनुमान और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना विकसित उड़ान का अगला चरण शुरू किया है। श्री मोदी ने कल राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत के नागर विमानन ढांचे

0: और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिला है।
1: उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि विकसित उड़ान योजना के शुरू होने से भारत के क्षेत्रीय संपर्क का अगला अध्याय शुरू होगा। श्री नायडू ने कहा कि 28,840 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ शुरू की गई ये योजना दूसरे और तीसरे श्रेणी के शहरों में हवाई संपर्क मजबूत करेगी। जोधपुर हवाई अड्डे पर श्री नायडू ने कहा कि इस विश्व स्तरीय सुविधा से मारवाड़ क्षेत्र में हवाई संपर्क मजबूत होगा और साथ ही राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
2: और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच है, जहाँ पे भी सिविल एविएशन का विस्तार होगा उसका प्रभाव सिर्फ यात्रियों पे नहीं पर उसके पूरे शहर के इकोनॉमी पे, के वहाँ पे बिजनेस पे, विद्यार्थियों पे, हर क्षेत्र के वर्ग को, हर नागरिक को उसका इम्पैक्ट रहता है। उसका ही प्रभाव आज देश भर में हमें देखने को मिल रहा है।
0: बाद में प्रधानमंत्री ने गुजरात के साणंद में देश के तीसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र में चिप पैकेजिंग के वाणिज्यिक उत्पादन का शुभारंभ करते हुए कहा कि संयंत्र में प्रत्येक वर्ष 20 करोड़ चिप तैयार होंगी। उन्होंने कहा कि ये विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स क्रांति का अगला कदम है, जिसने दुनिया को देश का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बना दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट का सफलतापूर्वक सामना किया है।
1: भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाने का सपना अब साकार हो रहा है।
3: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एथेनॉल कोई नई अवधारणा नहीं है और इसका उपयोग एक सदी से अधिक समय से हो रहा है। राजस्थान में कल श्री पुरी ने कहा कि सरकार अपने जैव ईंधन मिश्रण कार्यक्रम की रचनात्मक आलोचना का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि सरकार सुझावों के अनुसार आवश्यक सुधार करेगी। श्री पुरी ने कहा कि भारत में एथेनॉल मिश्रण का विचार सबसे पहले पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान शुरू हुआ था।
4: एथेनॉल का काम ना हमने इन्वेंट किया, 100 साल से इस पे काम हो रहा है। भारत में अगर आ जाए तो इस पे पहली योजना बनाई थी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बात कर रहा हूँ 2006 से लेकर 2008, और हमारा एक टारगेट था कि 5% हमें बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करनी है 10 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में, कर नहीं पाए, वो दूसरी बात है। 1.4% पे हमारी गाड़ी रुक गई।
0: ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को एक सुनियोजित, चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से संचालित प्रक्रिया के जरिए लागू किया गया है। नई दिल्ली में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने कहा कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम 2018 में संरचित चर्चा और हितधारकों के परामर्श के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया था। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष विक्रम गुलाटी ने कहा कि एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन है, ये अच्छी परिचालन क्षमता और तेज गति प्रदान करता है। सरकार ने कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर प्याज के खरीद मूल्य में 13% की वृद्धि की है। प्याज की कीमत अब 1,875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। हमारे संवाददाता ने उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के हवाले से कहा है कि संशोधित मूल्य से किसानों को लाभ मिलेगा और बफर खरीद प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।
5: सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड के माध्यम से प्याज की खरीद जारी है। कृषि और किसान कल्याण विभाग के वर्ष 2025-26 के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक होने का अनुमान है।

0: मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में वर्तमान स्टॉक पर्याप्त है और फिलहाल प्याज के भंडार में कोई कमी नहीं है। अखिल भारतीय औसत खुदरा मूल्य 31 रुपए प्रति किलोग्राम है। प्याज का निर्यात भी सामान्य है। इस वर्ष जून में लगभग 1,50,000 मीट्रिक टन प्याज का निर्यात हुआ है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉनसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। श्री रिजिजू ने कहा कि सत्र में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक चर्चा और निर्णय लेने पर ध्यान दिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं तथा गहरे आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों से समर्थित हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार, रक्षा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं और ये साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान की सरकारी यात्रा पर आज रवाना होंगे। इस दौरान वे इन देशों के विदेश मंत्रियों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। यात्रा का उद्देश्य इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श करना है। डॉक्टर जयशंकर 13 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत का अभियान शुरू करेंगे। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत करेंगे।
2: मातृ शक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितने प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, बड़ा गर्व महसूस करता हूँ। साथ में रखो थैला, क्यों करे हम राष्ट्र को मेला। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहे।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये परिचर्चा आकाशवाणी FM गोल्ड और 100.1 MHz पर आज सवेरे 10:30 से प्रसारित की जाएगी। जम्मू कश्मीर के तीर्थयात्री एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत गुजरात की 6 दिन की सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर जम्मू तवी वापस पहुंच गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन के कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सहयोग से आयोजित इस यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों ने श्री सोमनाथ महादेव मंदिर और गुजरात के कई अन्य धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक देश के अधिकांश हिस्सों में तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के तटीय जिलों में मूसलाधार वर्षा जारी है। लगातार बारिश के साथ साथ ज्वार भाटे की स्थिति के कारण मुंबई और ठाणे क्षेत्र में अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ब्रहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि नागरिक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 10,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिक्स ने कहा है कि लगातार दो भूकंप से मृतकों की संख्या 2,954 हो गई है और 16,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 16,000 लोग बेघर हो गए हैं। फ्रांस और मोरक्को

0: को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। फ्रांस ने अंतिम 16 के मैच में पैराग्वे को 1-0 से हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई। अब क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। इससे पहले ह्यूस्टन में मोरक्को ने कनाडा को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश किया। कैंसस सिटी में कल कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना भी अंतिम 16 में पहुंच गया है। अर्जेंटीना का अगला मुकाबला मिस्र से होगा। मैनचेस्टर में कल इंग्लैंड ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत की 4 विकेट से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 190 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने 19 ओवर में ही 6 विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाकर मैच जीत लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। राजस्थान और गुजरात में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, पश्चिम एशिया की जंग के दौरान आम लोगों पर कम से कम बोझ डाला गया, सही नीतियों से संकट टला, भारत चौथी बड़ी तेल शोधन क्षमता वाला देश बना, 40 देशों से भारत ने तेल का आयात किया। वहीं दैनिक भास्कर ने ग्राउंड रिपोर्ट में दिया है, ईरान ने हॉर्मुज से दुनिया का क्रूड ऑयल रोका लेकिन अब खाने के तेल को तरस रहा, ईरान अमरीका से जंग तो जीता लेकिन घरेलू मोर्चे पर चुनौतियों ने। जनसत्ता की सुर्खी है, राम मंदिर न्यास की बैठक सोमवार को, विशेष जांच दल की रिपोर्ट के साथ इस्तीफों पर चर्चा होने की संभावना। देशबंधु की सुर्खी है, 20 से शुरू होगा मॉनसून सत्र, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सत्र बुलाने की दी मंजूरी, जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेगा विपक्ष। अमर उजाला ने पाकिस्तान बेनकाब शीर्षक से दिया है, 23 घोषित आतंकियों में हाफिज का करीबी, राम मंदिर था निशाने पर, भारत में आतंकी हमलों तस्करी और घुसपैठ में शामिल है दहशतगर्द, टूटेगा आतंक का वित्तीय नेटवर्क, हर आतंकी मॉड्यूल को करेंगे निस्तनाबूद। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत याचिका खारिज। पंजाब केसरी ने ई रिक्शा पर साइबर अटैक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ऐप में बैटरी का वोल्टेज, करंट, तापमान, चार्जिंग स्टेटस और बैटरी हेल्थ जैसी जानकारी देखी जा सकती है। साथ ही कुछ कंपेटेबल बैटरियों में इसमें कंट्रोल फीचर भी मौजूद है, यानी बैटरी को ऑन या ऑफ करने की सुविधा। आरोप यही है कि कुछ लोग इसी कंट्रोल फीचर का गलत फायदा उठा रहे थे, ऐप पर अब प्रतिबंध लगाया जा चुका है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना का अगला चरण विकसित उड़ान शुरू किया। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज का खरीद मूल्य 13% बढ़ाकर 2,125 रुपए प्रति क्विंटल किया। प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की सराहना की। देश के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश जारी रहने का अनुमान। और फ्रांस और मोरक्को फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्चेस नेक्स्ट फेज ऑफ रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम विकसित उड़ान टू गिव फिलिप टू एयर ट्रैवल इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज। Government hikes onion procurement price for price stabilization buffer by 13% to 2,125 rupees per quintal to boost farmer income. IMD says monsoon rains will continue to lash large parts of the country over the next few days. Australian Prime Minister Anthony Albanese hails India as key economic partner ahead of Prime Minister Modi's visit. And in football, France and Morocco enter quarterfinals of FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi launched the next phase of regional air connectivity scheme Viksit Udaan in Jodhpur, Rajasthan yesterday to give fillip to air travel in Tier 2 and Tier 3 cities and remote regions. Addressing a massive gathering, the Prime Minister said that under the new phase of Udaan scheme, Smaller cities and remote regions will be connected through air connectivity.

कभी तुम्हें यूं देखा न था जैसे आज देख रहा हूं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या सोच रहा हूं?

आज तेरे मेरे साये भी मिलने दे, आँख को भी अपने आप में चलने दे, इस रात की कभी सुबह ना हो।

बरसात की रात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। साहिल जानवीन से लिखा, रोशन का संगीत, मन्नाडे, आशा भोसले, बतीश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाज़ों में आपने ये गीत सुना। हमारे साथी कह रहे कि आज छुट्टी के दिन कुछ पौधे को लगाए हैं, जैसे रात रानी का जो गर्मी में सूख गया था, इसके अलावा एक आंवले का पौधा भी लगाया। अभी मौसम अच्छा है तो ये पनप जाएंगे। वहीं हमारे साथी का कहना है कि मैं वो खुशनसीब हूँ जिसकी गोद में ईश्वर ने दो कलियों यानी बेटियों का सुख दिया। पता ही नहीं चला कब बेटियों की विदाई होगी। सब कहते हैं अब तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, लेकिन हमें लगता है कि फुर्सत मिलती कहाँ है। जो अपने साथ बैठ सके, मुझे अपने साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है। अपने गुरुजनों की दी हुई शिक्षाओं का मनन करना, कभी कभी किसी अनाथ आश्रम में जाकर भजन सुनना सुना आना, अपने बुजुर्ग माँ को जाकर प्यार करना और उन्हें भजन सुना के ईश्वर आना। ईश्वर मुझे इस तरह से फुर्सत देता रहे ताकि मैं सबको हंसाती रहूं, और क्योंकि हमारे गुरु ने हमें एक फार्मूला दिया है, शुक्राना और मुस्कुराना। इस फार्मूले के पीछे हम अपना जीवन लगा देना चाहते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि भाई ये आपने क्या कह दिया, हम तो संडे को सुबह से कार्य कर रहे हैं, इतनी सफाई होती है, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना, प्लम्बर को बुलाना, जितने अधूरे काम हैं उनको सही करना, इतना लेट हो जाते हैं पर प्रोग्राम सुनते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए प्रोग्राम से तो हम किसी तरह से बाधा नहीं पहुंचाते, हालांकि आपको काम थोड़ा हल्का ज़रूर लगता होगा, ऐसा हमारा मानना है। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई आज तो हमारे शहर में साप्ताहिक बाज़ार लगता है, मार्केट खुला रहता है, आज तो हमारी छुट्टी का कोई प्रश्न ही नहीं होता। हमारे यहाँ बाज़ार गुरुवार के दिन बंद रहते हैं। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा है कि आज बाजार में सामान लेने जाने की लंबी लिस्ट बनाई हुई थी, लेकिन सुबह से ही मॉनसून की पहली बरसात शुरू हुई और लगभग एक घंटे से अधिक झमाझम बरसात हुई है। इसके चलते सभी कार्यक्रम रद्द हो गए और बारिश में नहाते हुए बारिश का आनंद लिया, गर्मा गर्म चाय पकौड़े लिए और अब कार्यक्रम सुन रहे। तो देखिए वो प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया, लेकिन एक नया जो प्रोग्राम बन गया, हमें पूरी उम्मीद है इसमें आपको ज़्यादा आनंद आ रहा होगा। और हमारे एक और साथी कहते हैं कि इंसान को अगर सुकून चाहिए तो डिज़ायर लेस होना चाहिए और लाजमी है, क्योंकि इच्छाएं हमेशा दुख देती हैं, ऐसा मेरा मानना है। सिर्फ अध्यात्म का पथ ही जीवन में सुकून दे सकता है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि जीवन में कभी भी मन की इच्छा पूरी नहीं होती, जितना इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ईश्वर से मांगता है। और हमारे एक और साथी का कहना है कि ना तो दर्द गया ना दवा भी मिली, मैंने ढूंढ के ज़माना देखा। तो ये इनका कहना है। साथी कहा कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, भाई सबके विचार अपने अपने हैं, कोई भी गलत नहीं कहीं। और हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी एक इच्छा की पूर्ति के लिए आपको एक वक्त लगने वाला था बड़ा, और उसके लिए आपने बिताए पल पल पल गिनकर। कुछ ऐसा ही ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। बताइए किस फिल्म का गीत है और इसमें नायक कौन थे।

लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इस फिल्म में नायक नायिका विद्या बालन और संजय दत्त नजर आते हैं। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि कौन है जिसमें कमी नहीं, आसमां के पास भी तो जमीन नहीं। भाई वाह, बहुत ही सही तरह से इन्होंने अपनी बात कही। हमारी कौर साथी कहती हैं कि जीवन एक रंगमंच है जहां हर किरदार की पटकथा अधूरी है। किसी को किनारा नहीं मिलता तो किसी को कश्ती नसीब नहीं होती। सच तो यह है कि इस कायनात में मुकम्मल जहां महज एक ख्वाब है। जीवन की खूबसूरती इस बात में है कि हम अपनी अधूरी दास्तान में कितने मुकम्मल रंग भर पाते हैं, क्योंकि मुकम्मल जिंदगी किसी को नहीं मिलती। जो मिलता है वह अवसर अपने हिस्से की रोशनी से अधूरे पन्नों को रंगने का। अधूरी दास्तान में सबसे सुंदर कविताएं जन्म लेती और अपूर्ण यात्राएं ही मनुष्य को सबसे अधिक परिपक्व बनाती हैं। एक और साथी कहते हैं कि इंसानी उम्मीदें, आशाएं, चाहते और जरूरतें इस आकाश की तरह असीम और अनंत है। यहाँ जितने इंसान हैं उतनी ही कहानियां हैं और उतनी ही उनकी ज़रूरतें। कोई अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कदर नौकरी की तलाश में दिन रात एक कर रहा है, तो कोई महज चंद फुर्सत के लम्हों की आस में है। हर शख्स यहाँ किसी न किसी मृग तृष्णा के पीछे भाग रहा है और अपने हिस्से की कमियों को पूरा करने में जुटा है। शायद इसी कश्मकश का नाम जिंदगी है। मिला जो कुछ भी उसे ही मुकम्मल मान लिया, अधूरी ख्वाहिशों को खुदा की रजा मान लिया, ऐसा इन्होंने कहा। हमारे एक और साथी ने बताया कि घर की चाह थी जिसके लिए दिन रात एक कर दिया और अपना घर का सपना पूरा हुआ, पर कुछ सालों वहां रहने के बाद हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया और फिलहाल वहां नहीं रहते, पर अपने घर को बहुत मिस करते हैं। हिमकौर साथी ने कहा कि घर की बहुत तलाश की थी और आज से 10 साल पहले हमें हमारा खुद का घर मिला। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि मनुष्य ढूंढता क्या है, बचपन में खिलौना, जवानी में प्यार, बुढ़ापे में वक्त और मरते वक्त माफ़ी। असल में हम सब अपनेपन के भूखे हैं। कोई कहे तू है ना टेंशन मत ले, पैसा आएगा जाएगा, लोग आएंगे जाएंगे, पर जो तुम्हें तुम जैसा एक्सेप्ट कर ले उसे कभी मत खोना। तो ये बात भी बहुत सही आपने कही। हमारे एक और साथी ने इतवार का क्या प्लान है ऐसे बहुत से साथियों ने बताया, लेकिन हमारा तो प्लान है कि कार्यक्रम में आपको अगला गीत सुनवाएं और आप हमें ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस समय या इन दिनों आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमें बताइए। और हमें ज़रूरत है कि इस गीत को किसने गाया है ये भी आप हमें बताएं।

मोहब्बत। किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत, मनमौजी फिल्म का ये गीत आपने सुना और इसमें नजर आते हैं किशोर कुमार ही। हमारे साथी कहने कि आज बाहर बच्चों संग घूमने आए हैं इसलिए सक्रियता से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। हम कहेंगे कि आप सक्रियता से भले ही शामिल ना हो लेकिन अपने पारिवारिक माहौल में जरूर शामिल रहें। हमारे एक और साथी कहने कि आज इतवार है फिर भी डॉक्टर को दिखाकर आपके कार्यक्रम पर भागते हुए शामिल हो रहे हैं। यहाँ जो धूप है वो तो बाहर के देशों में गर्म देशों में भी नहीं पड़ रही होगी। वहीं हमारे एक और साथी कहने कि हमारे तो क्या संडे क्या मंडे, बच्चे स्कूल जाते थे तब संडे को लंबी लिस्ट होती थी उनके फरमाइश की, एक को कुछ चाहिए होता था तो दूसरे को कुछ। पति के जॉब में संडे ऑफ नहीं होता तो अब बच्चे साथ में नहीं है तो भी पता नहीं चलता कि संडे है या मंडे। वैसे हमारे जो साथी कह रहे हैं कि भाग कर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, भाई भागने की क्या जरूरत है क्योंकि आपके फोन में आप न्यूज ऑन AIR ऐप डाल सकते हैं और आराम से अपने फोन पर हमारा कार्यक्रम कभी भी सुन सकते हैं कहीं भी रहकर। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अब हमें रविवार को छुट्टी का दिन नहीं है, छुट्टी तो पूरे सप्ताह है क्योंकि मैं घर पर ही बैठे हूँ, पत्नी को डॉक्टर ने बेड रेस्ट कहा है, दुकान बंद है। तो बिल्कुल उनका बहुत ख्याल रखिएगा।

ऐसे ही वक्त में तो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि रविवार के दिन सभी घर में होते हैं तो आज के दिन भोजन में कुछ विशेष बनाया जाता है और मीठा व्यंजन तो अवश्य ही बनता है। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने व्यंजनों का नाम नहीं लिखा, वरना तो कार्यक्रम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज रविवार के दिन एक सहेली से मिलने जा रही हूँ, उसका तबादला हो गया है दूसरे शहर में। और हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि इस समय तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है खूब तेज़ बारिश की, क्योंकि सभी जल स्रोत सूख गए हैं। भाई तो ये बारिश कई जगहों पर आ चुकी है और आपके जगह आपके स्थान पर भी बहुत जल्द बारिश आएगी, ये हमें पूरी उम्मीद है। हमारे एक साथी को देखिए, उन्होंने कहा भी कि सुरीला सफ़र जब शुरू किया था तो कड़ी धूप थी कि हमने जल्दी से कपड़े धोकर सुखा दिए और देखते ही देखते काली घटा छा गई और बादल गरजने लगा, अंधेरा सा होने लगा। कैसा मौसम करवट अचानक से लेता है, इसलिए तो कहते हैं भगवान की कुदरत, भगवान की रहमत, भगवान की बरकत। सच में लाजवाब है, सुख और दुख दोनों अतिथि हैं, दोनों का सम्मान करें, चाहे धूप हो चाहे काली घटा छाए, दोनों में हम मस्त रहें। एक और साथी ने हमारे कहा है, बात बता रही हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो कह रहे हैं कि गर्मियों में नहीं, पल पल पल कैसे कटेगा, ये हमने पूछा था, तो वो कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के प्री प्लानिंग के कारण 5-6 घंटे की बिजली चली जाए तो वो ऐसा लगता है कि कैसे कटेगा ये पल, और गर्मियों का मौसम हो तो ये तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। हमारे एक साथी ने एक किस्सा लिख भेजा है कि जब वे स्कूल में पढ़ते थे उस वक्त एक आस दिल में लिए घूमते थे जो कभी पूरी नहीं हुई। दरअसल मैं बचपन से अमिताभ जी का फ़ैन था, रात दिन उनके बारे में सोचा करता था, उनके जैसा बनना चाहता था, उनकी फिल्में देखता था, उनके जैसे हेयर स्टाइल रखता था, उनके जैसे बेल बॉटम की पैंट पहनता था और आईने के सामने खड़े होकर उनकी फिल्मों के संवाद बोला करता था। स्कूल में भी ऑफ पीरियड में उनके संवाद बोलता था, इसके लिए टीचर की मार भी पड़ती थी। बड़ा होता गया, जीवन की सच्चाइयाँ उलझने सामने आती गईं और अमिताभ बनने का सपना सपना बनकर ही रह गया। भाई कोई बात नहीं, आप अपने जीवन में तो कुछ ना कुछ बने ही हुए हैं। और हमारे एक और साथी का कहना है कि संडे को तो और भी ज़्यादा काम हो जाता है, छुट्टी के दिन तो दिन छोटा हो जाता है, ऐसा लगता है कि चार हाथ हो जाएं। भाई ये वाली तो आपकी ख्वाहिश ना पूरी हो, हम ये मानना चाहते हैं, क्योंकि चार हाथ हो जाएंगे तो उतना ही काम भी बढ़ जाएगा। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ज़रूरत है मूसलाधार बारिश की, तो जल्द ही आपकी ये ज़रूरत पूरी हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति इन ज़रूरतों को ज़रूर पूरा कर देती है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि कौन सी ऐसी आशाएं आपके पास हैं जो पूरी हो रही हैं और पूरी हो जाएंगी जल्द ही, ऐसी आपकी आशा है। साथ में ये भी बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

इकबाल फिल्म का ये गीत आपने सुना और बिल्कुल सही जवाब दिया, फिल्म का नाम बिल्कुल सही आपने पहचाना, के सलीम मर्चेंट और डोमिनिक क्लिंटोन की आवाज़ में आपने ये गीत सुना। इरफान सिद्दीकी ने इसे लिखा, सलीम सुलेमान का संगीत। कार्यक्रम सुरीला सफ़र विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि संडे हो या मंडे हमारे लिए कोई भी छुट्टी नहीं, हर दिन बिजी लाइफ। भाई ये भी बड़ी अच्छी बात है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज कल एक मुंह से बोलने की ज़रूरत है क्योंकि हम अकेले हैं, कहने को तो सभी ही हैं इस परिवार में, लेकिन खाना चाय देने से हमारे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही है। मैं पत्नी को मिस कर रहा हूँ जो अब नहीं है। बिल्कुल आप अपनी उम्र के लोगों के साथ कोई मित्रता गांठें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो नौजवान घर के सदस्य होते हैं वो अपने कामों में भी उलझे रहते हैं। आपको समय पर चाय, नाश्ता, खाना तो ज़रूर दिया जा रहा है, लेकिन एक भावनात्मक सहारा आपको अपनी उम्र के लोगों के साथ मिलने जुलने से ज़रूर मिल जाएगा। हमारे साथी कह रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूँ कि मेरी श्रीमती वास्तव में मेरी सेवा करती हैं और मैं भी अपनी धर्मपत्नी का पूरा सम्मान करता हूँ। भाई एक रिश्ते की जो ये तो बिल्कुल होना ही चाहिए एक रिश्ते में, और ये आपके पास है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आपके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, आप शुभकामनाएं देते हैं। तो कार्यक्रम में जो एक कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, इस गीत के बारे में तो हमारे श्रोताओं ने भी लिखा और हमने भी इस बारे में सोचा, लेकिन अब आपकी सारी बातें सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि एक दूसरा ही गीत है जो आपकी और हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से बता पाएगा, और उसे ही कार्यक्रम का अंतिम गीत बनवा रहे हैं। हमें बताइए कि ये किस फिल्म का गीत है और क्या आप भी इस बात से सहमत हैं।

0: खट्टा मीठा फिल्म का ये गीत ही हमारी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करता है और इसके साथ ही आज का
1: शुरू होने के बाद कुदरती गैस की सप्लाई पर इमरजेंसी बंदिशें हटा ली हैं। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रुपए की इमदाद जारी की है। मरकज ने मेटा को हुक्म दिया है कि इंस्टाग्राम से बच्चों के इस्तेहसाल से मुतालिक इश्तिहार हटाए जाएं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। सरकार ने तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी की आपूर्ति से आपातकालीन पाबंदियां हटा ली हैं। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष में युद्ध विराम के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद किया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियमन आदेश 2026 में संशोधन किया गया है।
1: इस संशोधन के अंतर्गत उन विशेष आपातकालीन प्रावधानों को हटा दिया गया है जिनके अंतर्गत सरकार को देश में उत्पादित प्राकृतिक गैस और आयातित एलएनजी के आवंटन में प्राथमिकता देने की अनुमति थी। होर्मुज जलडमरू मध्य से एलएनजी की खेप में रुकावट आने के बाद इस साल मार्च में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये आपातकालीन आदेश जारी किया गया था। इस बीच मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर उन खबरों को भ्रामक और गलत बताया है जिनमें ये दावा किया गया है कि भूटान ने भारत से E20 पेट्रोल आयात करने का प्रस्ताव दिया है। मंत्रालय ने कहा कि भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं दिया गया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण जी रामजी अधिनियम 2025 सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मुख्य सहायता राशि जारी की। श्री चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ VBG रामजी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि आज जारी की गई पहली किस्त का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि राज्यों के पास पर्याप्त धनराशि हो ताकि मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जा सके। उन्होंने कहा कि मनरेगा को लागू होने में 3 साल से ज्यादा का समय लगा था, जबकि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ 1 दिन में लागू कर दिया गया।
2: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
0: श्री चौहान ने कहा कि VBG राम जी योजना के तहत मजदूरी दरों में औसतन लगभग 10% की वृद्धि की गई है। असम के गुवाहाटी में कल से 2 दिवसीय ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक शुरू होगी। गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी विचार विमर्श करेंगे। इससे मादक पदार्थ नियंत्रण एजेंसियों के समूहों में संस्थागत निरंतरता को सशक्त बनाने

0: और गहन परिचालन सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। भारत की अध्यक्षता में कल से केरलम के कोच्चि में 2 दिवसीय ब्रिक्स महिला कार्य समूह की बैठक शुरू होगी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि ब्रिक्स देशों के अधिकारी महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोबो सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी श्री प्रोबोबो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री जकार्ता में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया दौरे में कूटनीतिक बैठकों के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यक्रम जकार्ता में होगा। इसके अलावा वे योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे, जहां वे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रम्बानन मंदिर परिसर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर के संरक्षण और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने की योजना बना रहे हैं।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों में मजबूती और आर्थिक जुड़ाव में वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई देगी।
2: सिग्निफिकेंस इज इमेंस।
1: भारत और इंडोनेशिया का संबंध दो प्राचीन सभ्यताओं की मजबूत साझेदारी का प्रतीक है। दोनों देशों के रिश्ते सदियों पुराने हैं और आज भी कई क्षेत्रों में लगातार मजबूत हो रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे, साथ ही व्यापार, निवेश और आर्थिक साझेदारी को भी नई गति मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा से पहले प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को एक महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया है। श्री अल्बनीज ने कहा कि हमारे संबंध व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर आधारित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर शुल्क वाले विज्ञापनों में बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री के प्रसार को लेकर मेटा को कड़ी चेतावनी जारी की है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार सरकार ने इंस्टाग्राम को ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने और इसकी पहुंच को सुगम बनाने वाले सभी विज्ञापनों और सामग्री को बंद करने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट।
3: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मेटा से 7 दिनों के भीतर विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा है। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि क्या प्लेटफॉर्म ने भारत की मध्यस्थ सुरक्षा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया है। भारत में डिजिटल कानूनों के अंतर्गत अश्लील सामग्री और बाल यौन शोषण सामग्री का वितरण एक अपराध है। इससे पहले मंत्रालय ने उन रिपोर्टों का संज्ञान लिया था जिनमें कहा गया था कि इंस्टाग्राम पर कुछ आपत्तिजनक सामग्री प्रदर्शित की जा रही है जो बाल यौन शोषण को बढ़ावा देती है और अधिकारियों को मेटा से जवाब मांगने के निर्देश जारी किए थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कल से जिनेवा में AI गवर्नेंस पर संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। 2 दिवसीय वैश्विक AI संवाद में AI पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जो AI की क्षमताओं, उभरते अवसरों और जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। ये सत्र संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन द्वारा 6 से 8 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का निधन हो गया है। वे लंबे समय से बीमार थीं।

0: रायपुर के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज सुबह लगभग 3:15 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर तीजन बाई का अंतिम संस्कार आज शाम उनके पैतृक गांव दुर्ग जिले के गनियारी में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।
1: तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने और गाने का शौक था। सामाजिक विरोध और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने जुनून को नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई। महाभारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति की सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया।
2: दोनों जने मिलके सुनो कि मैं कुरुक्षेत्र मैदान में मैं भूल के शस्त्र नहीं चलाऊं।
3: अच्छा, जे जान पड़े तो ले गो, नहीं तो मोला छोड़ दे भैया, सेना ले ले चला। सावन में
1: विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन पर दुख व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डॉक्टर तीजन बाई के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति के सहयोगी यूरी उशाकोव ने क्रेमलिन में बताया कि श्री पुतिन ने राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका के स्वतंत्रता दिवस की 250वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने श्री ट्रंप को यूक्रेन युद्ध की स्थिति के बारे में जानकारी दी। अमेरिका ने कल राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ अपनी स्वाधीनता की 250वीं वर्षगांठ मनाई। मौसम संबंधी बाधा के बाद वॉशिंगटन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम नेशनल मॉल में शुरू हुआ। राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्र के इतिहास में इस वर्षगांठ को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, मराठवाड़, देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका और तेलंगाना में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज बादल छाए रहने और मध्यम वर्षा का अनुमान जताया है। नितिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में तेज बारिश के कारण कई जगहों पर जल भराव हो गया है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में आज शाम लॉर्ड्स में इंग्लैंड का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों टीमें अपराजित रहते हुए फाइनल में पहुंची हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को हराया और इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। होर्मुज जलडमरू मध्य से तरल प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर शुरू होने के बाद सरकार ने एलएनजी पर लगी आपातकालीन पाबंदियां हटाई। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता जारी की। केंद्र सरकार ने मेटा को इंस्टाग्राम से बच्चों के शोषण से जुड़े विज्ञापन हटाने का आदेश देते हुए 7 दिन के भीतर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन

0: अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी है। आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले फाइनल T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनने से पहले आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम फर्स्ट बॉल 20।
1: दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू बॉल बाय बॉल कमेंट्री ऑफ द फाइनल T20 क्रिकेट मैच टू बी प्लेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड ऑफ द आईसीसी विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026। Before that, listen to a special program, First Ball 20.
2: First Ball 20.
3: नमस्कार, फर्स्ट बॉल 20 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मुनीश जॉली और आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि हम एक बार फिर से पहुंच रहे हैं इंग्लैंड के लंदन में और वहां लॉर्ड्स का मैदान इंतजार कर रहा है। एशेज की पुरानी राइवलरी कह लीजिए जो T20 क्रिकेट में आ गई है, या फिर दिग्गज टीमें जिनको बहुत लोगों ने प्रिडिक्ट किया था, एक होम टीम है इंग्लैंड और दूसरी ऑस्ट्रेलिया और आज विमेन्स वर्ल्ड T20 का फाइनल है लॉर्ड्स में। मेरे साथ गीतांजलि सोनी मौजूद हैं।
4: Oh Manish, I must tell you the palpitation is really high because obviously there is little hit and miss. We are missing India at the moment, but right now we will only talk about Australia and England. Australia pure dominance, super aura, and today because it's Lords, a lot more to happen, but we have much more to talk about in the studio because we have our super experts. First of all, we have Chetan Sharma, former Indian fast bowler, and needless to say, 1987's World Cup hat-trick hero, the most loved. Chetan, welcome to the studio.
5: Thank you.
4: Also, we have Vaishali Mathur, India first class cricketer. Vaishali, you also have a lot to talk, right?
6: Yeah.
4: बहुत सारी बातें आपसे स्टूडियो में करने वाले हैं। स्वागत है आपका। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट बाय एनी मीन्स मोना पार्था सारथी, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, वेलकम अगेन। वी हैव अ लॉट मोर टू टॉक अबाउट गेम एंड व्हाट एग्जैक्टली आर द निटिग्रिटीज एंड यू आर द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट।
6: थैंक यू।
3: बहुत बहुत स्वागत है चेतन भाई, आप ही से शुरू करते हैं। वर्ल्ड कप का एक और फाइनल लॉर्ड्स की बात करते हैं। 1983 वर्ल्ड कप भूलता नहीं इसलिए जिक्र कर रहा हूं, लेकिन आज का मैच कैसे देखते हैं आप?
5: देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो आप रिवलरी की आप मतलब जितनी बड़ी बात कर लें उससे कम होगा। इंडिया पाकिस्तान की आप बात करते हैं, उधर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की बात करते हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि इंग्लैंड अपने घर में कोई वर्ल्ड कप का मैच अभी तक हारा नहीं है और ये एक ऐसा ग्राउंड है कि जहां पर मैच अगर तीन मैचेस खेले गए हैं लॉर्ड्स में, दो टीमों ने चेस करते हुए मैच जीता और एक टीम ने डिफेंड किया है और

0: टीम कौन सी है, इंग्लैंड। तो बहुत चीजें हैं जो इंग्लैंड के पक्ष में जाती हैं, आप उसको राइट ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन दोनों अनबीटन साइड्स हैं यहाँ हमारे सामने। जो अच्छी क्रिकेट आज खेलेगा ये ट्रॉफी उठाकर लेकर जाएगा।
1: वैशाली, बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना जो जब भी हम क्रिकेट की बात करते हैं तो उनके बारे में बात करना वाकई ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहली बात है, जैसे चेतन ने कहा, बहुत ही स्ट्रांग टीम है, एक भी मैच अभी तक नहीं हारी है। हमेशा हम बात करते हैं कि कौन सी टीम भारी रहने वाली है दूसरी टीम के ऊपर। ऑब्वियसली मुनीश उसके बारे में और भी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको लगता है हमारी दोनों टीम्स जो हैं उनके कैप्टन पहुँच चुके हैं ग्राउंड में, देखते हैं टॉस में क्या हो रहा है।
2: Defoes, I have match referee G.S. Lakshmi alongside our captains in Nat Sivabrunt and Sophie Molyneux from England and Australia respectively. Nat, you have the coin.
3: Heads.
4: Heads is the coin. It's heads.
3: We'll have a bowl.
2: Heads it is. Australia has won the coin toss. So what are Australia going to do?
3: We're going to have a bowl. Beautiful day out here, and yeah, we want to get out here, have a run around and hopefully put some pressure on them early.
2: It's a very Australian way sometimes to set and put runs on the board. Did you have a big conversation about what to do first?
3: Yeah, there's been a lot of discussion around it, but at the end of the day, you sort of have to go with your gut. I don't think the pitch will change too much.
2: At the start of the tournament, it was a Phoebe Litchfield watch. It turned into an Elise Perry watch with the accord awareness. Is Perry playing any other changes to the side?
3: We've got no changes. So, yeah, Pez pulled up really well from her training yesterday. And, yeah, very excited to come out here.
2: I read the other day that your childhood dream was to come to this ground with your dad and watch a test match. You're now here. I know he's in the stand as well. And you're captaining Australia. That's good to beat that, doesn't it?
3: Oh, it sounds pretty wild, to be fair. But, yeah, special day.
2: And 5-day gap, did you sort of just allow the players a little bit of time off just to freshen up the mind a bit?
3: Yeah, the girls got a couple of days off. Went across town from south of London to north and, started training over the last couple of days. So we're in a really good place.
2: We'll enjoy everything that is a final.
3: Thanks, Go Josie.
2: Nat, if it had fallen your way, would have things been different?
5: I was going to bowl as well, actually. It's a fresh wicket. Runs on the board in a final is no bad thing. So, happy to be stood here batting first.
2: You've kept a pretty consistent team right throughout this tournament. Any changes from the semi-final win against South Africa?
5: No, we're unchanged.
2: I'm gonna stick with that as well. Talk to me about your squad, and I'm not talking so much players, but just experience. Charlotte Edwards, captain a team on this ground in 2009. Heather Knight did it in 2017. If you sort of lent on them for experience, are you sort of thinking to yourself, I'm doing it my way?
5: It would be silly of me not to lean on that experience and then try and add my own little spin on it. I think the whole group throughout this tournament has obviously experienced different grounds, different conditions, different pressures, and we've produced some really good cricket along the way. So, hopefully we can do the same again today.
2: What wins it for England today?
5: One more run than the opposition, I suppose.
2: As simple as that. All the best. Go well, Nat. Australia have won the coin toss today, and they're going to bowl first in the final.
6: आकाशवाणी में अब एक बार फिर से आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता है, पहले बोलिंग करने का फैसला किया है। गर्मी बढ़ रही है लंदन में, विंबलडन हो चाहे लॉर्ड्स हो, पंखे निकल कर आ गए हैं, उसी गर्मी को हम यहां पे कायम रखते हैं। वैशाली, आपसे जानना चाहेंगे, टॉस जीता, आपने सुना दोनों कप्तानों ने कहा कि हम टॉस जीते तो चेज ही करते, आपके विचार?
7: इस टीम पे, इस पिच पे अगर देखें ना तो ये 75% ऑफ बैटिंग पिच है एंड 25% बॉलिंग पिच है। अगर बॉल के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग में मीडियम पेसर को काफ़ी स्विंग में फ़ायदा देगी, लेकिन जैसे जैसे बॉल पुरानी होती जाएगी वो स्पिनर्स पे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो मुझे ये लगता है कि इस पिच पे 180 प्लस का स्कोर जरूर देखेगी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के सामने। एंड उसके साथ ऑस्ट्रेलिया ने, मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये जो बॉलिंग लेने का निर्णय लिया है वो बहुत कॉन्फिडेंट अपनी बॉलिंग के ऊपर, एंड दे नो कि जिस तरह से बॉल, हम कहते हैं कि बॉल रिएक्ट करती है धीरे धीरे वो कम, उसकी स्विंग एंड वो सब कम होता जाता है, तो वो स्पिनर पे ज़्यादा फोकस करती है। तो आई थिंक इस यही एक बेनिफिट की वजह से उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग लेने का निर्णय लिया है।
6: ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन अपने कॉलर्स को बता दें कि अगर आप इस शो में जुड़ना चाहते हैं, वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले हमारे दिग्गज खिलाड़ी चेतन शर्मा मौजूद हैं, मोना पार्थसारथी मौजूद हैं, वैशाली माथुर हमारे साथ मौजूद हैं, और मेरे साथ गीतांजलि सोनी मौजूद हैं जो टेलीफोन रिसीव करेंगे। तो टेलीफोन नंबर्स मैं जल्दी से बता देता हूँ, हमारे नंबर्स हैं 2342-1084, 2342-1085, दिल्ली का कोड है 011, उसे लगाना बिल्कुल ना भूलें, 2342-1084, 2342-1085। गीतांजलि
1: जी, मुनीश, बहुत सारी बातें इनफैक्ट हमारे कॉलर्स हमसे करना चाहते हैं, जैसा नंबर आपको बताया उन नंबर्स पे आप

0: ज़रूर कॉल करें मोना। बहुत सारे फैक्टर्स इनिशियली मैं कह रही थी, चर्चा ज़रूर करेंगे उस बारे में, लेकिन सबसे पहले एक पिच की बात करें, लाइक वैशाली कह रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाली है उन लोगों को जो स्टार्ट पहले कर रहे हैं बैट करने से, राइट। लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग जब हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट व्हाट पिच इज़ गोइंग टू डू, इट वाज ऑलवेज लाइक बिकॉज इंग्लैंड का होम ग्राउंड है और इंग्लैंड ने अभी तक यहाँ पर एक भी मैच नहीं हारा है, उनको ये एज मिलेगा? मिलेगा
1: इंग्लैंड को न सिर्फ मैदान का एज मिलेगा, बल्कि आप कहीं भी देखिए जो इंग्लैंड के लॉर्ड्स का मैदान इतना बड़ा है और उसमें पूरा होम सपोर्ट इंग्लैंड को मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और उसके अलावा पिच की जो आप बात कर रहे थे, तो 158 एवरेज स्कोर रहा है इस पिच पर और हमेशा चेस करने वाली टीम जैसे चेतन सर बोल रहे थे यहाँ जीतती है और उनको फ़ायदा मिला, इसीलिए दोनों कैप्टन्स ने भी ये कहा कि अगर वो टॉस जीतते तो वो भी शायद चेस करना पसंद करते। और काफ़ी ही रोचक मुकाबला रहने वाला है क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों की अगर हम अभी तक का जो उनका सफ़र रहा है उसकी बात करें तो एकदम बराबर नज़र आती हैं। इंग्लैंड पिछले 2 साल में 18 महीने में बिल्कुल ट्रांसफॉर्म टीम नज़र आ रही है, तो काफ़ी एक मुझे लगता है रोचक मुकाबला रहने वाला
0: जी। और अभी रोचक बात यह है, कॉलर हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं और उम्मीद करते हैं पहले कॉलर एकदम डायरेक्ट सवाल पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से। नमस्कार
2: जी। नमस्कार
0: जी, नाम बताइए अपना।
2: जी मैं गुजरात राज्य से अशोक नाई बात कर रहा हूँ।
0: जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं?
2: देखिए मैम, मेरे ख्याल से सोफिया डंकली को मौका नहीं देना चाहिए मेरे समझ से परे, और क्या कितना टोटल होना चाहिए अगर जीतना है तो इस मैदान पर?
0: जी टोटल की चर्चा जरूर करेंगे, सोफिया के सिलेक्शन से खुश नहीं है। सो चेतन, वी विल हैव लॉट मेनी क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो चेंज मेड बाय एनी टीम, सो व्हाट एग्जैक्टली यू फील अबाउट द टीम?
3: देखिए दोनों अनबीटन साइड्स हैं और जब आप जीतते आते हैं तो हर समय ये कहा जाता है कि ज़्यादा बदलाव ना करेंगे तो अच्छी बात है आपकी टीम के लिए। और टॉस के समय अगर आप दोनों कैप्टन्स का रिएक्शन देखें, ऑस्ट्रेलिया तो टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना चाहती थी, उनके सोच में ये है कि आप फील्डिंग करें। बट मैं हर समय ये कहता हूँ कि इतने बड़े मंच पर आकर जब आप रहते हैं ना, रन्स ऑन बोर्ड हर समय आपकी मदद करता है इस प्लेटफॉर्म पर आकर। और इंग्लैंड की कैप्टन की भी यही सोच थी कि ठीक है हम टॉस हार गए हैं लेकिन रन्स ऑन बोर्ड हो सकता है कि ये प्रेशर में डाल दे, क्योंकि ये प्रेशर गेम रहेगा आपके सपोर्ट, जो कहते हैं ना सपोर्ट इंग्लैंड को रहेगी, क्राउड आपके अगेंस्ट रहेगा, आप चेस कर रहे हैं, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ इस समय, तो चीज़ें अच्छी नहीं होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए इफ इंग्लैंड गेट अराउंड 170-180। देखिए 150 पे कुछ नहीं होगा, 150 ये ग्राउंड ऐसा है कि इट्स ए ब्यूटीफुल विकेट, इसके ऊपर हम देख चुके हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच भी इसी ग्राउंड पर हुआ था, 170 रन एक ओवर पहले चेज कर दिया था ऑस्ट्रेलिया ने और लास्ट 10 ओवर में उस समय गीतांजलि 107 रन थे, स्टिल 1 ओवर टू स्पेयर दे फिनिश द गेम, तो वहां से अनुमान लगाया जा सकता है ये विकेट कितनी अच्छी है। तो इसलिए 180 ऑन अ फाइनल गेम विल बी अ प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली।
0: चेतन अभी तक 186 हाईएस्ट स्कोर रहा है इस ग्राउंड पर,
3: 180 बना दीजिए।
4: राइट देन वैशाली, तो आपने जो अनुमान लगाया 180-85 उसके पास मेरे ख्याल से इंग्लैंड की भी टीम जो है वही यही सोच रही होगी। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक प्लेयर हैं एशली गार्डनर, उनके बारे में जिक्र करना चाहता हूँ, शी इज बीन एन ऑलराउंड प्लेयर ऑफ द मैच पिछले गेम में। हाउ गुड इज ऑस्ट्रेलिया? ठीक है एशली गार्डनर के बारे में हम शक नहीं कर रहे, लेकिन वॉट डेप्थ है उनके बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, अगर हम देखें क्या खास आपको दिखता है ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं?
5: देखिए उनके पास ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं, एलिसी पेरी वो एक ऐसी ऑलराउंडर है जो आपके मीडियम पेसर में ही सिर्फ बॉलिंग में ही फ़ायदा नहीं देती, आपको बैटिंग भी करके देखती है। और उनका ये खासियत, उन्होंने 170 स्कोर जब हुआ था इंडिया के अगेंस्ट और वहीं वहाँ पे खड़े होकर उन्होंने बैटिंग भी की थी उस टाइम पे, तो ये एक बेनिफिट होता है एक्सपीरियंस प्लेयर का। और एलिसी पेरी वो प्लेयर है जो WPL में भी बहुत अच्छा करके गई है एंड उसकी वजह से वो काफ़ी बेटर इम्प्रूवमेंट इम्पैक्ट पड़ता है एक टीम पे, तो ये एक फ़ायदा है। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि इंग्लैंड के पास एक बेनिफिट ये है कि वो अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं एंड उसके साथ उन्होंने इसी ग्राउंड पे इंडिया के साथ मैचेस खेले हैं, सीरीज़ खेली हैं और वो उन्होंने एक एक्सपीरियंस गेन किया उनके बैटर और बॉलर्स ने।
4: मोना आपसे एक बहुत छोटी सी बात जानना चाहूँगा, ये अली से पेरी के बारे में बात हो रही है, आपने कभी देखा कि सेमीफाइनल में रिटायर्ड हर्ट होके विमेंस क्रिकेट में एक प्लेयर को बाहर बुला लिया क्योंकि फाइनल गेम तैयारी कर रहे हैं?
1: जिस तरीके से सेमीफाइनल में वो रिटायर्ड हर्ट होके बाहर गई थी तो लग रहा था कि पता नहीं फाइनल खेल पाएंगी या नहीं, लेकिन पिछले 2 प्रैक्टिस सेशन में वो नज़र आई और उससे लग गया था कि इतना बड़ा मैच है वो इस मैच से अलग नहीं हो सकती। और कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि वो पूरी तैयारी कर रही हैं, सारा कुछ जतन उन्होंने कर लिया है कि

0: किसी तरह से उनको ये फाइनल खेलना है। सेवेंथ, अभी तक वो 6 बार जितना ऑस्ट्रेलिया जीती है, उन्होंने काफ़ी अच्छा सफ़र देखा है। और 2023 से, जैसा कि आप जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, तो ये एक बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं और उनको बाहर रखने का मुझे नहीं लगता जोखिम ऑस्ट्रेलिया ले।
1: जी, और एक जोखिम हम कभी नहीं ले सकते, हमारे कॉलर्स को बाहर रखने का। एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, नमस्कार जी, नाम बताइए अपना।
2: चेतन शर्मा जी, नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
2: नमस्कार, आप आ गए तो मेरा बहुत खुशी हो जाता साहब। मैं 1970 से कमेंट्री सुन रहा साहब।
3: नहीं, आप, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आप कब आएंगे, आपका टेलीफोन कब बजेगा।
2: साहब, आप शारजा में एक बार मैच हो रहा था, जब क्या हुआ, आप हैट्रिक नहीं है, मेरे को याद है अभी तक।
1: जी, सभी को याद है हैट्रिक।
2: और एक मैच में जावेद नहीं था आपका बॉलिंग में, लास्ट में छक्का मार के मैच विन हो गया था साहब।
3: जी जी जी जी,
1: बहुत इंटरेस्टिंग मेमोरीज।
2: अभी तक याद रहता, आप आते में वही याद आता साहब, के रमेश हैदराबाद उस्मानगंज।
3: आज वुमेन्स क्रिकेट की बात करते हैं और छोड़ देते हैं सभी को।
4: जी, वो मेरे ख्याल से वो कुछ और बोलना चाह रहे थे, लेकिन
1: एक्साइटमेंट
4: जस्ट आउट ऑफ दिस एक्साइटमेंट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। शारजा की बात की, गर्मी याद आ गई। अब आपने 86 में टूर किया था, घातक स्पेल डाला था इंग्लैंड में, तब का मौसम इतना चेंज हो गया पाजी, प्लेयर्स कैसे अडैप्ट कर लेते हैं इन गर्मियों में और इन टेम्परेचर चेंजेस।
3: देखिए, कभी आप सोच नहीं सकते कि अगस्त सितंबर में इंग्लैंड में डे नाइट क्रिकेट होगी। आज के समय में देखिए, डे नाइट क्रिकेट आप खेलते हैं, वहां से अनुमान लगाया जा सकता है कि कैसा टेम्परेचर में बदलाव हुआ। पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें, टेम्परेचर में बदलाव है। इस विकेट के ऊपर मैं बात करूंगा, इन दोनों टीम्स की बात करूंगा। 9.2 पूरे टूर्नामेंट में 9.2 पर ओवर के हिसाब से इंग्लैंड ने रन्स बनाए हैं, 9.4 के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने रन्स बनाए हैं। यहाँ पर एडवांटेज, अगर हम, मैं मनीष और गीतांजलि बात करूँ, एडवांटेज किस पक्ष में जाता है, वो जाता है थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में, क्योंकि उनके गेंदबाजों ने 6.2 पर ओवर इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। देखिए, आपको मैचेस कौन जिताएगा, मैचेस आपको T20 क्रिकेट हो या टेस्ट मैचेस हो, आपको गेंदबाज, आप 200 रन बना देंगे, आपके गेंदबाजों में दम नहीं है तो 200 रन ऑपोजिशन चेस कर लेगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की अगर आप इकोनॉमी देखें गेंदबाजों की, 6.2, तो ये थोड़ा एडवांटेज जाता है। लेकिन वो एडवांटेज तब आता आपके पास ज़्यादा, अगर मैं कैप्टन होता, कि जब मैं पहले बल्लेबाजी करके 180-190 ऑन बोर्ड लगाता और दूसरे को चेस करने देता, क्योंकि मेरे गेंदबाजों की जो इकोनॉमी रेट है वो 6.2 है। या तो आप ऑस्ट्रेलिया जाए और 6.2 से रोकने की कोशिश करें, इसका मतलब 140 के आसपास आप इंग्लैंड को रोकने की सोच रहे हैं, अगर मैं आपके आंकड़े देख रहा हूँ। तो लेट्स सी व्हाट ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स डू नाउ।
1: और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है मोना, अगर आप दोनों टीम को एनालाइज करें, तो जो इंग्लैंड, ऑफ कोर्स एक होम ग्राउंड का तो उनके पास एडवांटेज है, लेकिन वो बहुत रिलाय करते हैं अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे, मतलब अभी जो हम देख रहे हैं उनका प्लेइंग स्टाइल। जहाँ ऑस्ट्रेलिया को देखो तो बहुत ही अच्छी कलेक्टिव, एक बहुत ही स्ट्रांग टीम नज़र आ रही है, तो ये एक एडवांटेज तो ऑस्ट्रेलिया के पास बाय डिफॉल्ट है। प्लस ऑब्वियसली वॉल ने भी 101 रन बनाकर नंबर वन क्रिकेटर बन गई हैं, सो वो भी बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज है ये।
0: देखिए, अभी बहुत बातें हो रही थी कि जब इंग्लैंड की टीम बहुत ज़्यादा डैनी वेयर्ड पर डिपेंड करती है, लेकिन आपने सेमीफाइनल में देखा, 3 विकेट गिर गए थे उनके 23 रन पर, और उसके बाद जिस तरीके से नेट सीवर ब्रंट ने या हीटर नाइट ने जिस तरह की पार्टनरशिप की और जो टीम को जीत तक ले गए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो 2017 की टीम थी जिसने वनडे वर्ल्ड कप जीता था, उसमें से कैप्टन और हीटर नाइट और डैनी, तीनों प्लेयर के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है वर्ल्ड कप का। वो कहते हैं ना, बीन देयर डन दैट, तो वो वर्ल्ड कप जीतने का अनुभव उनके पास है। और यहाँ एक और बात रोचक है कि जो इनकी कोच है चार्लोट एडवर्ड्स, 2009 में जब पहली बार इनॉग्रल जीता था वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने, एकमात्र जो जीता है अभी तक, उस समय वो उस टीम की प्लेयर थी, तो उनको अनुभव है कि कैसे जीते जाते हैं वर्ल्ड कप। और वही जिस टीम को उन्होंने हराया था ऑस्ट्रेलिया की, उसकी जो प्लेयर थी शैली निशके, वो भी ऑस्ट्रेलिया की कोच है, तो कोचों का भी एक अलग ही मुकाबला यहाँ चल रहा है कि कौन किस पर भारी पड़ता है।
4: वी आर हैविंग अ लवली डिस्कशन हियर बिकॉज़ यू नो बहुत अच्छा पैनल हमारे पास है, एंड वी आर जस्ट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द फाइनल। आकाशवाणी में आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 20, हमारे साथ चेतन शर्मा मौजूद है, मोना पार्थ सारथी मौजूद है, वैशाली माथुर हमारे साथ मौजूद है, गीतांजलि भी रन अप ले रही है, वो थोड़ा सा रन अप ले रही है। तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ वैशाली, हमने स्टैट्स की बात कर ली, ऑन ग्राउंड आज की डेट में अगर मैं आपसे कहूँ कि इंग्लैंड को ठीक है रन तो बनाने, लेकिन ऐसी क्या स्ट्रेंथ आपको इन दोनों टीमों में किसकी ज्यादा दिख रही है, पहला सवाल ये। और दूसरा ये कि इंग्लैंड की तरफ से ऐसा क्या उनको पावर प्ले में या स्लो गोवर्स में अलग करना पड़ेगा जिससे वो आगे हो जाएं।
5: इंग्लैंड में नेट सीवर अभी इस टूर्नामेंट की

0: हाईएस्ट रनर है,
1: जी
0: जो उनके ज़्यादा रन्स है, तो उनके पास ये एक बेनिफिट है इंग्लैंड टीम के पास. एंड उनके पास एक डैनी वॉट है जो ओपनर आती हैं, एंड जो पावर प्ले में वो एग्रेसिव प्ले करती हैं वो शानदार है, काबिले तारीफ है. और अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया में भी बैटर बहुत ज़बरदस्त है, बेथ मूनी है उनके पास, जो उनकी कंसिस्टेंसी काफ़ी बेटर है. इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला है और बाकी मैचेस में भी उन्होंने काफ़ी बेटर करते हुए दिखाई दी हैं. तो दोनों टीमों में आज जो बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों टीमें अच्छी करती हैं, लेकिन जो फील्डिंग, जो मेन पार्ट है वो है फील्डिंग. आप फील्डिंग कितना अच्छा करते हैं वो ज्यादा मैटर करती है.
1: ऑलराइट, इससे पहले कि गीतांजलि अपनी रनअप के साथ आए और एक अगला सवाल पूछे, भारतीय रिप्रेजेंटेशन भी है इन दोनों टीम्स में. पाजी, आईपीएल में लगभग सारी प्लेयर्स जो हैं इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की, आईपीएल में कहीं ना कहीं किसी टीम से वो लोग खेल चुकी हैं, सो वो एक तरह का इंडियन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है.
2: जी, और रिप्रेजेंटेशन की आप बात कर रहे हैं तो दोनों कैप्टन्स की, चेतन मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा एनालाइज करें दैट बोथ द कैप्टन्स, इंग्लैंड की जो हेथनाइट हैं और ऑस्ट्रेलियन की नए कैप्टन है सोफी, इनमें से किसकी कैप्टनसी आपको बहुत इफेक्टिव लग रही है?
3: देखिए दोनों टीमें अनबीटन आई हैं अभी तक, और अनबीटन जब आती हैं तो ऑब्वियसली बोथ कैप्टन्स हैव डन वेल. अभी मनीष ने जो क्वेश्चन पूछा था ना किसके ऊपर इंग्लैंड रिलाई करता, मैं कहूंगा ओपनर्स के ऊपर, बिकॉज दे आर वेरी एक्सप्लोसिव. और अगर एक चांस इंग्लैंड के पास बनता है वो बनता है कि आप पहले 6 ओवर्स को कैसे भुनाते हैं, फर्स्ट 6 ओवर्स, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, एक्चुअली मेरे साथ डिबेट हुआ है कि लॉट ऑफ पीपल थिंक कि 7 से 15 बहुत इंपॉर्टेंट ओवर्स होते हैं. मैं हर समय एज ए बॉलर मानता हूँ कि पहले 6 ओवर्स हर समय इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, बिकॉज दैट विल टेक अवे द गेम फ्रॉम यू. देखिए कैप्टन्स का रोल कैसा होता है गीतांजलि, जो आपने बोला कैप्टन तो सभी बनते हैं, लीडर कौन बनता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. अपनी टीम को कौन लीड करता है, जो परफॉर्म करेगा. और अभी तक मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया हैज डन ए ग्रेट जॉब, बिकॉज अगर आप ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल्स और नॉकआउट गेम्स देखें ना, वेस्ट इंडीज को कैसे धाराशाही किया, वो कॉन्टेस्ट नहीं रहना देते हर समय, दे जस्ट फिनिश द ऑपोजिशन. जैसे नॉकआउट स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया आती है दे नेवर वॉन्ट की कॉन्टेस्ट रहेगा, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट. तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियंस आर टफर व्हाट इंग्लैंड आर, बट इंग्लैंड के जो रिकॉर्ड्स, अभी मैम भी बोल रहे थे कि दे आर अनबीटन वर्ल्ड कप में, आज तक इंग्लैंड में हारे नहीं. होम सपोर्ट होगा, अपनी विकेट्स को जानते हैं, थोड़ा सा होम एडवांटेज रहता ही है आपको, तो इट्स गोइंग टू बी अ कंटेस्ट. बट मैं सिर्फ चाहता हूं बैटिंग करते हुए इंग्लैंड 180 रन बना दे, एंड आई वांट टू सी ऑस्ट्रेलिया चेसिंग दैट.
1: और चेतन भाई आप कह रहे हैं कि 180 विनिंग स्कोर होने वाला है,
3: देखिए हो सकता है. देखिए आप, यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट ऑस्ट्रेलियंस, नंबर 10 तक बैटिंग करते हैं वो, और जैसे उन्होंने इंडिया के खिलाफ ताबड़तोड़ की, मुझे तो, मैं भी था यही स्टूडियो में था उस दिन, में मुझे लग रहा था एक तरफा इंडिया मैच जीतेगी, और मैच ऐसे गया हाथ से कि मतलब आप पूछ नहीं सकते. तो ऑस्ट्रेलिया गॉट अ डेप्थ, एंड ऑस्ट्रेलियंस आर वेरी टफ, स्पेशली इन नॉकआउट गेम्स.
1: हमारे हाथ से कॉलर ना चले जाए.
2: बिल्कुल, वो टफ कॉलर हमारे साथ हैं अभी तक, उनसे बात करते हैं. हेलो
4: हेलो, नमस्कार मैम.
2: नमस्कार जी, नाम बताइए और सवाल पूछिए अपना.
4: मैम मेरा नाम उमाशंकर सिंह है, मैं यूपी से बोल रहा हूँ.
2: हाँ जी
4: मैम, जितने भी अभी तक सब लोग मैच में, जैसे चाहे वो महिला चाहे वो पुरुष हो, मतलब इंग्लैंड जब तक लॉक मैच जल्दी बाजी हारा नहीं है, पर आज इसमें क्या हो रहा है, आप इसमें किसकी उम्मीदवार आपको लग रही?
2: जी, अगर आपने अभी तक हमारा शो सुना है लगातार और आप फोन करने में बिजी नहीं थे तो इसकी चर्चा हो चुकी है. बिल्कुल, दोनों टीम्स हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं लगातार कि हर एक के पास कुछ प्लस पॉइंट्स हैं और कुछ उस पर चीज़ें वर्कआउट होंगी. बाकी तो आप जानते हैं जो क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल है, हमेशा हम यही कहते हैं. एक बार फिर आपको बता दें, आप सुन रहे हैं फर्स्ट बॉल 2020 और हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं चेतन शर्मा हमारे साथ, मोना पार्थसारथी हैं और हमारे साथ हैं वैशाली माथुर, मैं हूँ गीतांजलि सोनी और मेरे साथ हैं मुनीश जौली.
1: मोना, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जर्नलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप दो दिग्गज टीमों को देखते हैं, कितना आसान या कितना मुश्किल होता है एनालिसिस करना, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं यहाँ पे. सो हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज फॉर स्क्रिप्टिंग यू नो अ मैच लाइक दिस बिफोर द फर्स्ट बॉल इज बोल्ड?
5: मुनीश जी, कई बार तो ऐसा होता है कि लास्ट बॉल में पूरा इंट्रो बदलना पड़ता है, पूरी कॉपी चेंज हो जाती है. ऐसे भी कई बार हुआ है, और तब अगर इंडिया का मैच नहीं है तो कभी चाहे कोई कितना भी बोले कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप अच्छे गेम को एनकरेज करें, लेकिन जहां इंडिया एंगल आता है थोड़े से हमारे भी इमोशंस आ जाते हैं उसमें। लेकिन अब यहां तो आपको तटस्थ होके देखना है कि कौन टीम कैसा खेल रही है, और मुझे लगता है कि इतना ज्यादा क्रिकेट अब होने लगा है ना कि सब एक दूसरे के खिलाफ काफी क्रिकेट खेलते हैं, तो अब वो जमाना नहीं रहा कि आपको वर्ल्ड कप में ही दो दिग्गजों की टक्कर देखने को मिल रही है।

0: और अभी जैसे चेतन सर कह रहे थे कि ज्यादातर सारे प्लेयर्स जो हैं वो हम WPL में इनको देखते हैं,
1: जी
0: तो अभी ऐसा कुछ नहीं रह गया है कि आप कुछ एक दिमाग में प्रिजुडिस लेके बैठेंगे कि हाँ ये ऑस्ट्रेलिया है, नो डाउट ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट में आने के बाद सामने कोई कंटेस्ट रहने नहीं देती दूसरी टीम पर, एक साइकोलॉजिकल गेम भी उनका चलता रहता है लगातार। लेकिन फिर मैं वही बात कहूंगी कि आपस में इतना आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जा रहा है कि सब एक दूसरे के वीकनेसेस और स्ट्रेंथ जानते हैं, और जर्नलिस्ट भी जानते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करना है, और कभी कभी स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है।
2: जी वैशाली, एज अ क्रिकेटर बहुत सारे मोमेंट्स आपने भी एक्सपीरियंस किए होंगे। अभी जो कंडीशन चल रही है आप देख रहे हैं, थोड़ी देर में हम भारतीय टीम की भी बात करेंगे, बहुत सारे हमारे श्रोता जानना चाहेंगे इस बारे में, लेकिन अभी जो टीम है, आप इंग्लैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, एक अलग जज्बा आपको ऑस्ट्रेलियन टीम में नज़र आता है, क्या कारण है? आप देखा जाए तो हमारी भी भारतीय टीम वो बहुत ही ज़्यादा सशक्त टीम है, बहुत ही स्ट्रांग टीम है, कौन से ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आपको लगता है कि मिस कर गए और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन टीम के पास वो बहुत ही स्ट्रांग तरीके से मौजूद हैं?
3: इंडिया के बाद मेरी तो सबसे फेवरेट है, उसके बाद इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम। एंड ऑस्ट्रेलिया टीम में हम कह सकते हैं कि उनका जो फिटनेस लेवल है वो आउटस्टैंडिंग है, वो कहीं और हम अगर किसी कंपेयर करें किसी भी टीम से तो वो उतना हाई लेवल पे नहीं है। एंड उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो उनके पास टॉलर बॉलर्स हैं। आप देखिए कि हमारे पास एक झूलन गोस्वामी थी, और टॉल का जो निप मिलता है ना बॉल को वो डिफरेंट होता है, वो बॉलर को थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं मिलता है, तो वो आउट होने के कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं उनके। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए कि ऑस्ट्रेलिया टीम एंड उनके पास एक कंसिस्टेंसी है, वो जितने मैचेस वो खेलते हैं उतना मुझे लगता है कि एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया उतने मैचेस वो नहीं खेल पाते हैं, क्योंकि 25% कहीं ना कहीं वो रह जाते हैं मैचेस के लिए। तो एक ऑस्ट्रेलिया टीम के पास एक बेनिफिट है। एंड उनकी जो हम ट्रेनिंग की बात करें तो वो ट्रेनिंग अगर हम देखें तो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ वो बेटर है, चाहे वो आप इंग्लैंड ले लीजिए या साउथ अफ्रीका ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के पास एक बेनिफिट है।
1: पाजी बहुत जल्दी हम लोग जाएंगे हमारी कमेंट्री टीम के पास और दो दिग्गज कमेंटेटर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आई नो बहुत अर्ली पूछ रहा हूं, लेकिन प्रिडिक्ट करना चाहेंगे कि विनर कौन होने वाला है?
4: देखिए मैं तो आंकड़ों के साथ जाऊंगा, मैं आंकड़ों के ऊपर देखता हूं तो ऑस्ट्रेलिया ने इस स्टेज पर आकर तीन बार मतलब मात दी है, 2012, 2014, 2018 इंग्लैंड को मात दी है फाइनल्स में आकर, तो मतलब इतनी पिटाई के बाद तो मनोबल नीचे रहता है। तो लेट्स सी, दैट्स व्हाई आई वांटेड इंग्लैंड टू गेट टू 180 एंड आई वॉन्ट सी ऑस्ट्रेलिया चेजिंग इट। तो मैं इस मैच को एक कांटे वाला मैच देखना चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि 6.2 इकोनॉमी रेट की वजह से 140-145 में रह जाए इंग्लैंड, तो इट वोंट बी ए कंटेस्ट, आई वॉन्ट इंग्लैंड टू स्कोर 180।
1: मोना, क्योंकि इशारा हो गया प्रोड्यूसर साहब का हमको जाना है, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि एक शब्द आपको बोलना है, इंडिया और सॉरी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, मेरा पेट्रियोटिज्म आ गया इंडिया के नाम।
0: हाँ बिल्कुल, हम सबके मन में आज मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया
1: राइट। वैशाली बता चुकी हैं, तो मैं मुनीश जौली, गीतांजलि सोनी के साथ आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे साथ ट्यून्ड इन थे और आपने सुना ये प्रोग्राम फर्स्ट बॉल 20, और सीधा चलेंगे लॉर्ड्स लाइव कमेंट्री के लिए हमारी टीम के साथ।
5: फर्स्ट बॉल 20,
1: तो आइए चलते हैं हमारी कमेंट्री टीम के पास। दिग्गज कमेंटेटर्स हिंदी में विनीत गर्ग, अंग्रेजी में प्रकाश वाकणकर, स्कोरर हैं भूपेंद्र सिंह भाटी और स्टैटिस्टिशियन ओम प्रकाश शर्मा। ओवर टू आवर कमेंट्री टीम।
6: नमस्कार, स्वागत है क्रिकेट के इस महाकुंभ में। आप जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप महिलाओं का अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है और ये फाइनल मुकाबला है, और किसके बीच में? पुराने जाने माने प्रतिद्वंदी, कांटे का मुकाबला हमेशा होता है जिनके बीच में, ऑस्ट्रेलिया और मेजबान इंग्लैंड। लॉर्ड्स का यह मैदान जो क्रिकेट का मुख्यालय है, और पहली सूचना जो आपके पास अब तक पहुंच चुकी होगी, दोनों ही टीमों में सेमीफाइनल में जो टीमें खेली थीं कोई परिवर्तन नहीं है और दोनों विजय रथ पर सवार हैं। क्यों होगी टीम में कोई बदलाव या परिवर्तन क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही अब तक अविजित हैं इस टूर्नामेंट में। और ऐसे में इंग्लैंड, जो कि कभी भी इंग्लैंड में किसी भी फॉर्मेट में वर्ल्ड कप हो तो हारा नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया को उसने कभी किसी भी फॉर्मेट में ICC टूर्नामेंट के फाइनल में हराया नहीं है। तो ये एक अजीब सब समा बंधा है यहाँ पर, और सब उत्सुक हैं, सब चाहते हैं कि एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले। और यहाँ जो चार ऑफिशियल्स हैं उसमें से आज दो भारतीय हैं, चर्चा जारी रहेगी।

नंबर 10 जिस पे थोड़ी सी घास है, नीचे से वो काफी सूखी हुई नजर आ रही है। स्ट्रेट बाउंड्रीज 70-71 मीटर की हैं, स्क्वायर बाउंड्रीज लगभग 60-65 के आसपास की हैं, और क्योंकि पिच नंबर 10 है और मैदान पर 20 पिचेज हैं तो लगभग लगभग सेंटर पिच हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक और स्क्वायर थोड़ा छोटा हो जाए। सबसे छोटी बाउंड्री 58 फुट के आसपास की है। जब विकेट के पीछे की ओर खेलते हैं तब स्वाभाविक है कि वो उस ओर की बाउंड्री कम हो जाती है। तो टीमें मैदान में आ रही हैं, राष्ट्रीय गान हो चुके हैं दोनों ही देशों के, और ये महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। प्रकाश मेरे साथ हैं और आप उत्सुक होंगे कि उनके क्या विचार

0: जब विकेट के पीछे की ओर खेलते हैं तब स्वाभाविक है कि वो उस ओर की बाउंड्री कम हो जाती है, तो टीमें मैदान में आ रही हैं, राष्ट्रीय गान हो चुके हैं दोनों ही देशों के और ये महत्वपूर्ण मुकाबला होगा। प्रकाश मेरे साथ हैं और आप उत्सुक होंगे कि उनके क्या विचार हैं और ये लॉर्ड्स है और लॉर्ड्स के स्लोप की हम बात करते रहेंगे। स्वागत करता हूँ प्रकाश वाकनकर।
1: थैंक यू विनीत एंड गुड इवनिंग वेयरएवर यू आर लिसनिंग। इट्स अ बिग डे एट लॉर्ड्स वेयर द T20 World Cup final between the old rivals, as Vineet has described, is going to be played, and one of the two prevailing equations has to change. That is that England have never lost a final in an ICC tournament at home, and they have also never beaten Australia. Australia looking for their seventh title, England for their second, and those of our listeners who remember will know that that came right here on this ground when Anya Shrupsole really was the key difference. Harmanpreet's great innings proving to be not enough, and that was the final they won against India. Well, bright sunshine here on our TV monitors. It seems to be good conditions, as Vineet described. It's a fresh pitch, and England will have to get a above par score, Vineet, because this Australian juggernaut is not going to be stopped by anything short of that.
0: सबके दिमागों में यही बात है प्रकाश की, किस तरह से ये वेल ऑयल्ड मशीन जिसको कहते हैं, क्या ये खिलाड़ी हैं। और आप देखें कि ऑलराउंडर से भरी हुई है ये ऑस्ट्रेलियाई टीम। एक मैच में तो 8 बॉलर्स का इस्तेमाल किया, शायद एक दो ऐसे हैं क्रिकेटर, विकेट कीपर को हटाई दीजिए, बैटर हैं सारे के सारे जो बॉलिंग भी कर लेते हैं। तो इनके पास इतने विकल्प हैं मैदान पर कि अगर कोई दिन आपका नहीं है, किसी दिन आप नहीं चल पा रहे हैं, तो आपके पास दूसरे ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं। दो, जैसा कि मैंने कहा कि दो भारतीय ऑफिशियल्स हैं, उनमें से एक इस समय बॉलिंग वाले छोर पर नज़र आ रही हैं, वृंदा राठी, और इसके साथ वो मशहूर वेस्ट इंडीज़ की अंपायर जो जिनका कि ये 5वां T20 विश्व कप है, जैकलिन विलियम्स, वो शायद स्क्वायर लेग पे अभी नज़र आएंगी। तो ये स्थिति है कि जो बहुत ही बढ़िया शानदार जोड़ी है, और वो खिलाड़ी, वो बैटर डैनी वाइट हॉज, जिन्होंने कि सबसे अधिक रन बनाए हैं अब तक टूर्नामेंट में, वो पारी की शुरुआत करने के लिए इंग्लैंड की ओर से आ चुके हैं। एमी जोन्स विकेट कीपर हैं, बैटर हैं, पारी की शुरुआत करेंगे, साथ में 7 पारियों में 89 रन, 125 का स्ट्राइक रेट। तो डैनी वाइट हॉज दोनों ही दाएं हाथ के बैटर्स हैं, और दिलचस्प होगा कि एक तो शुरुआत किस ओर से होती है, पेविलियन एंड से या नर्सरी एंड से, दूसरा ये कि क्या होता है। लूसी हैमिल्टन और किम गार्थ की जोड़ी रही है, एक मैच को छोड़कर हर बार इन्होंने ही नई गेंद का इस्तेमाल किया है। 7 मैचों में 5 विकेट लेने वाली लूसी हैमिल्टन, देखिए, और किसको, मैगन शुल्ट्स को बाहर बैठा रखा है इन्होंने। बाएँ हाथ से बॉलिंग करती हैं, एक बाएँ हाथ के बॉलिंग का विकल्प उनको मिलता है, लेकिन किम गार्थ की शुरुआत होने वाली है अपने उनके ओवर की। 1-6 के बीच का ये पावर प्ले जिसमें केवल 2 खिलाड़ी बाहर रखे जा सकते हैं, ये रही मैच की फाइनल की पहली गेंद। एक स्लिप तैयार है, और जैसी कि आमतौर पर गार्ड करती हैं, उनकी पहली गेंद आउट स्विंगर थी, एक लेंथ पे टप्पा खाकर दाएं हाथ के बैटर को छोड़ती हुई स्टंप्स के पास से नहीं होकर, बल्कि थोड़ी सी जगह थी। लेकिन आजकल बॉलर्स जो हैं पहली ही गेंद पे विकेट खूब ले रहे हैं, पहले इक्का दुक्का कोई होते थे, आजकल ये बड़ी चर्चा का विषय हो गया। सावधानी रखी, कुछ नहीं छोड़ दिया उसको विकेट कीपर के लिए। जैकलिन विलियम्स, जैसा कि मैंने आपको कहा, उनका 96वां वर्ल्ड T20 इंटरनेशनल मैच है। गेंद बल्ले पे ठीक से नहीं आई, घूम कर पुल करना चाहती थी, अंदरूनी सिरा लगा, फील्डर ने कोशिश बहुत की, सफलता नहीं मिलेगी, और ये शुरुआत हुई खाते की 4 रन।
2: ये लगा आभा का चौका,
0: जोन्स के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका था, लगभग 2 ऑफ द बैट के पास से, स्टंप्स और बैटर के बीच में से भाग्य ने साथ दिया, और उस पर 4 रन अवश्य मिले। वेरहम ने भरपूर प्रयास किया उस गेंद को रोकने का। फील्डिंग का देखिएगा, बड़ा मजा आएगा, फील्डिंग के स्तर एक आसमान छू रहे हैं प्रकाश, और जिस तरह से बाउंड्री लाइन पे किया, वाह क्या दृश्य था। संतुष्ट नहीं है, दोनों बातचीत कर रहे हैं, अब तक थोड़ा सा स्विंग मूवमेंट जरूर नजर आया है, और ये जो स्विंग मूवमेंट है, नर्सरी एंड और पेविलियन एंड दो हैं, और दोनों ही एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं।

0: तीसरा अंपायर सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वो चार रन वहां पे जो छोटे छोटे विज्ञापन है रोक के ऊपर उससे छू गई या नहीं छू गई, और अब वो चार रन का इशारा आ रहा है जिससे खाता खुला है और जोन्स के खाते में जुड़ा है और इंग्लैंड फाइनल्स में चार रन बगैर नुकसान के तीसरी गेंद के लिए तैयार किम गार्थ। और इस बार ज्यादा ललचाती हुई गेंद थी, खेला उसको पॉइंट पे फील्डर है, बाउंड्री लाइन के नजदीक फील्ड कर लिया गया। पिच को अगर आप देखें तो काफ़ी घास है लेकिन नीचे से काफ़ी सूखी नज़र आ रही है, और जैसा प्रकाश ने बताया बिल्कुल फ्रेश है, अब तक इस पर कोई मैच हुआ नहीं है। आमतौर पर स्क्वायर बाउंड्री 58 और 65 की रही है लॉर्ड्स में, आज लगभग लगभग 64-64 की रहेगी, दोनों ओर एक सार नज़र आ रहा है स्क्वायर बाउंड्री का जो इलाका है। 5 रन बगैर नुकसान के पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने। व्हाइट हॉट जो जबरदस्त फॉर्म में हैं, किम गार्थ सामने हैं, और क्योंकि बॉलिंग इस समय पेविलियन एंड से हो रही है उनको अपने फुटवर्क पे ध्यान देना होगा। ओ खतरनाक गेंद, इस ओर से जब बॉलिंग होती है तो एक नेचुरल वेरिएशन से गेंद सीधी रह जाती है और इसी से आपको अपने आप को काबू रखना पड़ेगा, अपने फुटवर्क पे भी काबू रखना पड़ेगा। एज लगी बैट की और स्टंप्स के पास से निकल गई। क्या आज का दिन इंग्लैंड का दिन साबित होने वाला है, क्या भाग्य उनका साथ दे रहा है।
1: Certainly looked like that on that occasion, dropped between the batter and the stumps and then bounced over the stumps. Unbelievable luck.
0: किम गार्थ 5 विकेट लिए अब तक टूर्नामेंट में, बिल्कुल स्टंप्स के पास आके शॉर्ट एंड वाइड कट किया उसको, पॉइंट पे फील्डर मौजूद है, बैकवर्ड फील्ड किया गया, 1 रन और। तो दिलचस्प है, आमतौर पर जो सीम का इस्तेमाल करता है वो पेविलियन एंड से बॉलिंग करता है, यहाँ जहाँ तक संभव हो पेविलियन एंड से सीम बॉलर्स जो पिच का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, और नर्सरी एंड से स्विंग बॉलर्स, और लाजमी है कि हैमिल्टन उस ओर से बॉलिंग करेंगी जो खासा स्विंग कराती हैं। अगली गेंद ओवर पिच गेंद, हाफ वॉली स्विंग होती हुई, और क्या फील्डिंग, कवर क्षेत्र में शानदार क्षेत्र रक्षण, रन नहीं लेने दिया, यही है T20 क्रिकेट का मजा।
2: रिपोर्ट्स लाई हो ना?
3: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
2: तुम हो ही भुलक्कड़।
3: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
4: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
5: आभा
4: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
1: A tentative start really by England. A streaky boundary for Amy Jones got things underway. And there have been a couple of questions asked. Already we've seen the athleticism of the Australian girls in the field. And that will be a factor, as Vineet mentioned quite clearly. Both sides, but particularly Australia, just exceptional in the form of a well-oiled machine that has not had any silverware for a few years now. And they'll be thirsting to get the trophy in their cabinet. Right then, Lucy Hamilton, left arm over the wicket, balls wide outside the off stump, may well be called that. Wait to see whether Jackie Williams thinks so. No, it's all right. Must have pitched just inside the tram line, but certainly moved away, exaggerated movement away from the right-hander. Danny Wyatt-Hodge, leading run scorer in the tournament so far. Healthy strike rate, just under 300 runs as well. And Amy Jones, who hasn't really blossomed with the bat. Next one's pitched up and it's gone. I think it's carried. Yes, it has. And that's a big wicket. Amy Jones edging one to the lone fielder in that slip cordon. And that means England have lost an early wicket. Australia rocking the home team in the very second over. In fact, that is the last thing that England wanted, having been put into bat, shaping away, looking for a big drive, outside edge, carries to gully. And taken very comfortably, Australians don't drop catches beneath. And that's the dream start for the girls in their green and yellow.
0: Amy Jones ek bar fir offside mein out ho rahi hain. Predominantly onside ki cricket.

0: के बाद टॉस हारकर इंग्लैंड 12 रन और विकेट कीपर एमी जोन्स का वो खो चुके हैं। शिवर ब्रंट और व्हाइट हॉज की जोड़ी इस समय मैदान पर है। शिवर तीन मैच खेली, उसके बाद उनको क्वाड की ट्रबल हुई, उनको जांगों में तकलीफ हुई, उसके बाद नहीं खेली। पिछले मैच में क्या जोरदार वापसी की, 75 रन बनाए 47 गेंदों पर। अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से कलाइयों का प्रयोग किया, डाइव किए हुए फील्डर से गेंद छिटकी, दूसरे रन के लिए जा रही है। इससे पहले कि आके उसको उठाया जाए, दूसरा रन भी पूरा हो गया। ये होता है जब पहला रन आप तेज लें, फील्डर्स के ऊपर दबाव बनाए, अपनी दाईं तरफ जाकर डाइव लगाई, पूरी लंबाई का फायदा उठाते हुए डाइव लगाई, लेकिन हाथ से लगने के बाद छिटके और एक रन और पूरा हुआ। तीन रन अब तक इस ओवर में, दो गेंदे शेष हैं। ऑफ साइड में एक कवर पॉइंट है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, और लॉन्ग लेग है सीमा रेखा पर, बाकी सब दायरे के अंदर हैं। बहुत फुर्ती दिखा रहे हैं ओवर्स करने में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी, ज़रूरी है, नहीं तो लास्ट पावर प्ले में एक फील्डर कम मिलेगा बाउंड्री लाइन के पास। अगली गेंद को रक्षात्मक रूप से खेला और गेंद वापस बॉलर को दी जा रही है। शिवर ब्रंट 10 इनिंग्स अब तक उनकी हैं, जो पिछली 10 इनिंग्स हैं उनमें उनका लेखा जोखा बढ़िया है। क्या कर सकता है इंग्लैंड, कितना संतुलन रखना होगा, कितने स्ट्रोक्स खेलने हैं, विकेट गिरने से बचाने हैं। ये 6 ओवर का पावर प्ले जिसमें केवल 2 खिलाड़ी बाहर रखे जा सकते हैं, उसका फ़ायदा भी तो उठाना है, और ऐसे में आप विकेट भी दे सकते हैं। लॉर्ड्स के स्लोप में जिस जगह खड़े होकर बैटिंग कर रही हैं शिवर ब्रंट, आपका संतुलन बिगड़ जाता है, आप शफल करके आपका फुटवर्क आपको ऑफ स्टंप के बाहर ले जाता रहता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी इसके आदी हैं, दर्शक भरे हुए हैं, लगभग 30,000 के आसपास दर्शक, और क्यों ना हो, बहुत बड़ा अवसर है क्रिकेट के मुख्यालय में, और मैच किसका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, परंपरागत प्रतिद्वंदी, कांटे के मुकाबले के लिए सब ललायित हैं। क्या होगा अंतिम गेंद पर, अच्छी गेंद स्टंप्स को, यू हैव टू अटैक स्टंप्स, बीच बीच में स्टंप्स की सीध में, अगर आपको शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और ऑन साइड में फील्ड प्लेसमेंट है तो आपको फायदा मिल सकता है, नहीं तो फिर आप महंगे भी साबित हो सकते हैं।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
2: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
4: 14 for 13 overs gone. England haven't really been able to capitalize on the power play so far, except for one authoritative cover drive by Nat Siver Brunt. There's just been that one bottom edged boundary for Amy Jones. Australia starting off just the way you'd expect, and a change in bowling now. The Australian captain, Sophie Molyneux, will start her left arm spin, and she's replacing Lucy Hamilton, who's got the best economy rate, I dare say, probably in the tournament itself, but certainly in the Australian team. She hasn't been among the wickets as much, but she's kept a very tight leash. And Wyatt Hodge has been susceptible to spin in her early part of the innings. And here's Sophie Molyneux now. An economy just at 6.5 runs and over. First ball of spin. And down the wicket comes Wyatt Hodge. Gets a thick outside edge. He's going to run down towards the square third boundary. Won't be cut off. 4 runs.
5: ये लगा आभा का चौका।
4: Again, not quite where White Hodge wanted to play that. She was looking to play inside out through extra cover. Thickish outside edge. Keeper standing up, but covering the turn well and getting a fortuitous boundary. So 2 out of the 3 boundaries for England with a slice of luck. Here's Molyneux again. Wide of the crease, short and off the back foot, crunched. Not timed at all. Diving stop, I think it's Ellis Perry there, who dives to her right. What a cricketer she is. Talismanic, and someone who's played football for Australia as well. Supreme athlete, had a little bit of an injury scare in the semi-final, but she's come back raring to go. And Wyatt Hodge now completes 300 runs in the tournament. 19 for 1. Siver Brunt, Molyneux. captain to captain.

0: straight to the fielder at point, and there will be no chance of a run. It remains 19 for one in the fourth over now. 3.5 overs gone. England will have to look at getting a move on here. Molyneux bowls down the wicket, comes Siva Brunt again. There's a bit of turn. This could be tight. The bails have been whipped off. They will go upstairs, I think. We'll have to wait and see whether Vrinda Rathi will actually signal that, or will the third umpire just review it and respond. But certainly beaten in the air was Siva Brunt. Had to check her shot. Again outside edge. Quick throw in from Georgia Wall. And I think she's made her ground, but it was tight there. A single that they really shouldn't have been taking a risk with, but managing it. I think 20 for one. The two batters in mid-conference now, Vineet. Here's the decision. Yes, she looks like she's in, Vineet.
1: बिल्कुल और विकेट कीपर काफ़ी परेशान नजर आई, खफा थी कि वो एक बेहतरीन अवसर को चूक गई रन आउट करने का. सिवर ब्रंट को मॉल्यूनू ने 3 बार आउट किया है T20 में. अच्छा मैचअप है, राइट हैंडर और बाएं हाथ का स्पिन बॉलर.
0: नाउ वायट हॉज, हुज हैड अ स्प्रिंट टू सेव हर विकेट, नाउ वेट्स फॉर मॉल्यूनू एंड शी लुक्स टू स्वीप. द बॉल कम्स ऑफ द बैट ऑनटू द ग्रिल ऑफ हर हेलमेट. नाउ विल दिस लीड टू अनदर स्मॉल स्टॉपेज फॉर अ check, safety check, or was it not something that impacted the batter? We'll find out. We don't know that yet. 20 for 1. Siva Brunt is on 7. Wyatt Hodge also on 7. And these two have put on 13 runs. We're in the fourth over, last ball. And it's turned away on the onside to think of a run which isn't there. Excellent over, except for that one edge boundary. 20 for 1.
1: To the chest cricket. चल रहा है. ये पिछली गेंद 80 के आसपास की थी. कभी कभी ऐसा अब तक जितना थोड़ा सा खेल हुआ है उसमें ये प्रतीत हो रहा है कि गेंद बहुत आसानी से बल्ले की तरफ आ नहीं रही है. स्ट्रोक्स खेलना इतना आसान नहीं है. गति में परिवर्तन, वेरिएशन ऑफ द पेस भी नज़र आ रहा है. बहुत ही बुद्धिमानी और चतुराई के साथ बॉलिंग कर रही है ऑस्ट्रेलिया इस समय. और राइट हैंडर्स हैं उधर. आप देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम में सब लेफ्ट हैंडर्स हैं, ज़्यादातर लेफ्ट हैंडर्स हैं. कम से कम 3-4 लेफ्ट हैंडर्स हैं और इसीलिए वो ऑफ स्पिनर का मैचअप जो उनके साथ होगा तो चार्ली डीन कारगर साबित हो सकती हैं. लेकिन फिलहाल नेट सिवर ब्रंट के दिमाग में भी ये बात होगी कि उनको कई बार मॉल्यूनू ने आउट किया है. अच्छा बॉलिंग चेंज था और परेशानी में नज़र भी आई. कोई भी बैटर अब तक प्रकाश विश्वसनीय नज़र नहीं आया है पिच पे कि वो रफ्तार को समझ गया है या अपने खुलकर स्ट्रोक खेल पा रहे हैं. ओवर पिच गेंद पैरों के पास ऑफ द टोस खेल दिया डीप बैकवर्ड स्क्वायर बाउंड्री की तरफ 4 रन.
2: ये लगा आभा का चौका.
1: लगातार बॉलिंग में परिवर्तन कर रही हैं कप्तान. अनाबेल सदरलैंड को लगाया था और उनका अच्छा स्वागत किया और नसीहत दी. एक खराब गेंद जो ओवर पिच हुई और स्विंग के साथ अंदर की तरफ आ रही थी, विद द टाइड खेल दिया उसको और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के पास उधर जहां टेवन स्टैंड है उस ओर गेंद चली गई 4 रन के लिए. 24 रन एक विकेट पर. इस बार उठा कर खेला है, उस ओर फील्डर है लेकिन काफ़ी दूर है. फील्ड किया, दूसरे रन के बारे में नहीं सोच रही हैं. लॉर्ड्स के मैदान पर जब आप देखेंगे मैदान तो आमतौर पर तजुर्बेकार खिलाड़ी होते हैं वो बाउंड्री लाइन पर कम से कम 5-7 फिट अंदर की तरफ खड़े रहते हैं. लॉर्ड्स में आप बिल्कुल बाउंड्री पर खड़े नहीं रह सकते. ये एक विशेषता है इस मैदान की. इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखना होता है. उसके बाद भी लोग उत्सुक होते हैं कि लॉर्ड्स में आकर खेलना है. 25 रन एक विकेट पर. 5वां ओवर चल रहा है. टॉस ऑस्ट्रेलिया ने जीता, फील्डिंग कर रही है. अच्छी लंबाई की गेंद कर रही है, स्विंग हो रही है गेंद और रन लिया ज़रूर है लेकिन इस समय वेल विद इन देमसेल्व्स. दोनों बैटर्स कोई बहुत ज़्यादा आक्रामक तेवर प्रकाश नहीं दिखा रही हैं.
0: Trying to consolidate and create a base here. I don't think they're too worried about the power play. Different teams approach power plays differently, as we know, Vineet. England looking like they want to just make sure they don't lose too many wickets.
1: Sutherland. Pratiksha kar rahi hai. Field ko hi badi jatan ke saath jamai ja rahi hai aur umpire ki bhi nigaah hai. Aur batter ki bhi nigaah hogi. No ball ka ishara kuch vilam ke saath aaya. Teesre umpire jo ki किम कॉटन बहुत ही तजुर्बेकार अंपायर हैं और वहीं से

0: तीसरे अंपायर से ही इस टूर्नामेंट में इशारे आते रहे हैं और यही नियम बनाया गया है.
1: वेरी क्लोज, जस्ट ऑन द लाइन,
2: ऑलमोस्ट हार्श.
0: कड़ा निर्णय, अंपायर ने काफी समय भी लिया ये फैसला करने में और अंततः बैटर के पक्ष में ये निर्णय गया. फ्री हिट मिलेगा, उसकी तैयारी की जा रही है. मुझे याद आता है ऑस्ट्रेलिया में हम कमेंट्री कर रहे थे सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड में. प्रकाश ने मुझसे पूछा था कि जब इस तरीके से होता है फील्ड में परिवर्तन होता है या नहीं होता है, फिर वही जवाब ढूंढ के लाए थे कि अगर बैटर बदल गया है तो होता है. ऑफ स्टंप के बाहर से ये गेंद और उसको घुमा दिया है पुल के अंदाज में और गेंद जा रही है स्लॉग कॉर्नर में मिड विकेट के बाई तरफ से सीमा रेखा के बाहर, चार रन.
3: ये लगा आभा का चौका.
0: पूरी बैकलिफ्ट 360 डिग्री में घूमता हुआ बैट, जैसे कि पुराने समय में कैलेप्सो कहलाने वाले वेस्टइंडीज क्रिकेटर खेलते थे. लेकिन ये T20 का जमाना है साहब, और महिलाओं का क्रिकेट हो या मेंस का पारंपरिक क्रिकेट हो, अब तो बल्ला घूमता है और बखूबी घूमता है. दो चौके लग चुके हैं इस ओवर में. खराब गेंद, थोड़ी दिशाहीन, लेग स्टंप के बाहर आई, पूरा फायदा नहीं उठा पाई. दूसरे रन के लिए सोच रही हैं, दो फील्डर झपटे, विकेट कीपर स्वयं पहुंची वहां उस गेंद को रोकने के लिए, लेकिन कोई विशेष लाभ बैटर उठा नहीं पाए क्योंकि गुंजाइश केवल उस लेग बाइस पर एक रन की ही थी. पर जैसा कि हम दोनों ही आपको बताते रहे, अब तक टाइम नहीं कर पा रहे हैं, गति का परिवर्तन है निश्चित है, कर रहे हैं चतुराई के साथ बॉलर्स, लेकिन उसके बावजूद भी ये विकेट कुछ धीमा लग रहा है और बैट पे नहीं आ रही है गेंद. फिर लेग स्टंप के बाहर कलाबाजी खाते हुए विकेट के पीछे कैच के लिए अपील कर रही है और अंपायर इशारा कर रहे हैं वाइड का. गार था ये बात करने के लिए और उस सलाह मशवरा हो रहा है कि रेफरल लिया जाए या नहीं लिया जाए. 7, 6, 5, समय रुकता थोड़ी है और ले लिया. सोफी मोलिनू कप्तान जो है उन्होंने इशारा कर दिया, हमें रेफरल चाहिए. तीसरे अंपायर को निर्णय कर लेने दीजिए क्या ये आउट था अथवा नहीं.
4: माइट बी क्लोज रिमाइंड्स मी व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट व्हेन हैरी ब्रुक वाज गिवन आउट. एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन डाउन द लेग साइड, द अंपायर डिक्लेयर्ड इट अ वाइड एंड देन द रिप्ले शोड द बॉल हैड टेकन द ग्लव. दिस विल टेल यू विनीत.
0: बिल्कुल, ग्लव्स के बेहद करीब से जा रही है, निश्चित रूप से अल्ट्रा एज देखना चाहेंगी किम कॉटन. बहुत ही तजुर्बेकार अंपायर हैं, बहुत अनुभव है उनके पास. और वो जो दृश्य है आपके दिमाग में भी आया होगा, ईशान किशन बहुत ज़्यादा विश्वसनीय नज़र आ रहे थे, संकल्प से भरे हुए थे, कह रहे थे बिल्कुल बिल्कुल आउट है आउट है. और यहाँ विकेट कीपर एमी, जबकि ग्लव्स के पास से एज नज़र आ रही और ये निश्चित रूप से विकेट मिल जाएगा वहाँ. अच्छा रेफरल किम कॉटन के निर्णय की हालांकि प्रतीक्षा है, लेकिन वो स्निको, वो जो अल्ट्रा एज है जो कार्डियोग्राम की तरह उस ऊपर नीचे उठने वाली रेखाएं आती हैं, ग्लव्स के पास से जब गेंद गुजर रही थी और विकेट कीपर बहुत जल्दी बर्ट मुनी उसको समझ गई थी और उन्होंने बड़ी मुस्तैदी के साथ कैच की तरफ वो लपकी थी और छलांग लगाते हुए डाइव लगाते हुए उन्होंने किया था, वो कैच किया था और रेफरल मिला. उनके रेफरल दो अभी भी बरकरार रहेंगे, दोनों टीमों को दो दो इस इनिंग्स में, सफल जब तक वो रहेंगे, जब तक दो बने रहेंगे. पूरे हाथ आगे फैलाए, पोजीशनिंग अच्छी थी, अनुमान अच्छा लगाया था, हालांकि अनसाइटेड थी बैटर के द्वारा. और उसके बाद भी मुनी, जिन्होंने कि अब तक 5 कैच पकड़े हैं पीछे विकेट के इस टूर्नामेंट में, अपना पूरा अनुमान लगाकर और उसका लाभ दिया. और उसके बाद उन्होंने जानबूझकर सलाह भी दी कि लीजिए इसमें गुंजाइश है. और अब उंगली उठती हुई विंदर है, ठीक है, जबकि बैटर जा रही हैं, तो दबाव इंग्लैंड के ऊपर अचानक नजर आ रहा.
4: एब्सोल्युटली, एंड सो द लीडिंग रन स्कोरर इन द टूर्नामेंट डैनी वाइट हॉज जॉइंस हर ओपनिंग पार्टनर एमी जोन्स बैक इन द लॉर्ड्स पवेलियन. इंग्लैंड इन ट्रबल आई वुड से, हैविंग लॉस्ट द सेकंड विकेट फॉर 32.
0: ऑस्ट्रेलिया न केवल दो विकेट ले चुका है और रन बनाने की गति जो पावर प्ले में इंग्लैंड रखना चाहता है, हर टीम रखना चाहती है, क्योंकि दो ही फील्डर बाउंड्री पे होते हैं, उसका लाभ भी वो नहीं उठा पाए हैं. और एक वो जो पार्स स्कोर की जो परिकल्पना उन्होंने की होगी और जो दिमाग में बैठा होगा, उसका इस पिच को देखकर और परिस्थितियों को देखकर अब संभल कर खेलना होगा. ज़्यादा विकेट वो खोना नहीं चाहेंगे. एलिस कैप्सी, इनकी बहुत ज़्यादा चर्चा इस टूर्नामेंट में नहीं हुई है, लेकिन आज सुनहरा अवसर है, वो अपने आप को साबित कर सकती हैं और बीड़ा उठाएं इंग्लैंड को आगे ले जाने के लिए. 5 मैच 74 रन, ये उनके लेखा जोखा है पिछली 5 इनिंग्स का. कैप्सी सामना करेंगी, वही स्ट्राइक लेंगी, अंतिम गेंद और धीरे से पुश भर कर दिया बहुत ही इत्मीनान के साथ।

0: और कप्तान साथ दे रही थी सेवर ब्रंट, एक रन पूरा हो गया, पांच ओवर समाप्त, 33 रन 2 विकेट पर।
1: तुम रिपोर्ट्स लाई हो ना?
2: नहीं, मुझे लगा तुम लाए हो।
1: तुम हो ही भुलक्कड़।
2: भूल बस इतनी है कि तुमसे शादी कर ले।
3: लड़िए मत, जानिए आभा के बारे में।
4: आभा
3: यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, जहां आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स सुरक्षित रख सकते हैं और जब चाहें और जहां चाहें ये रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं। आभा, सेहत के सफर में आपका हम सफर। आज ही आभा ऐप डाउनलोड करें या डायल करें 1-4-4-7-7।
5: 33 for 2, not dissimilar to the kind of position England found themselves in the semi-final against South Africa. The important thing is Siva Brunt is still there. She's on 16. Alice Capsey has just joined her. Danny Wyatt Hodge would consider herself a little bit unfortunate to have been snaffled down the leg side, but the athleticism of Beth Mooney once again showing that if you are fit and sharp, a lot more is possible. Capsey now on strike, and Lucy Hamilton is back into the attack for her second over, having bowled the first one for just 4. Bowls to Capsey. Capsey swings and misses outside the off stump.

0: अयोध्या और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से और टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उड़ीसा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। शहर में पेड़ गिरने की 2 अलग-अलग घटनाओं में 63 वर्षीय एक व्यक्ति और 18 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते कई सड़कें बंद कर दी गई है, बिजली आपूर्ति बाधित हुई है और गडचिरी, कोल्हापुर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है। इस बीच रायगढ़ जिले के खोपोली स्थित आदोशी जलप्रपात में भारी बारिश के कारण अचानक जलस्तर बढ़ जाने से 10 से 12 पर्यटकों को पुलिस और

0: बचाव दल ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली तथा गिर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉ. जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय की सुरक्षा तथा कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कतर के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और पश्चिम एशिया संघर्ष तथा उसके प्रभाव पर उनके आकलन की साझा करने की सराहना की। डॉ. जयशंकर इस महीने की 13 तारीख को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की यात्रा करेंगे, जहां वे 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कार्यकाल के लिए भारत के आधिकारिक अभियान का शुभारंभ करेंगे। इंडोनेशिया गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की वहां की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी मनाएगा। इसके लिए वर्ष 2026 और 2027 के दौरान 15 महीने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल से शुरू होने वाली इंडोनेशिया यात्रा के दौरान इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया जाएगा। शताब्दी समारोह में प्रदर्शनियां और पूरे वर्ष चलने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: With Prime Minister's arrival in Indonesia,
4: प्रधानमंत्री के इंडोनेशिया आगमन के साथ ही हम वर्ष 2026 और 2027 को टैगोर दिवंतारा सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान वर्ष के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई है। हमने इंडोनेशिया में टैगोर विषय पर एक पुस्तक भी तैयार की है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा की स्मृति में पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
3: राउंड द ईयर कमेमोरेटिंग टैगोर्स विजिट टू इंडोनेशिया।
1: पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद इस वर्ष अगस्त से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। आज हुई बैठक के बाद जारी बयान में तेल उत्पादक समूह ने कहा कि यह निर्णय बाजार स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। समूह ने कहा कि वह वैश्विक तेल बाजार पर नजर रखना जारी रखेगा और सहमति वाले उत्पादन लक्ष्यों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा। भाग लेने वाले देशों की अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए आज तेहरान में राजनीतिक, सैन्य और धार्मिक नेतृत्व ने सामूहिक प्रार्थना में भाग लिया। 9 जुलाई को मशहद में आयतुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके बाद 40 दिनों तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। ब्रिटेन की सेना ने बताया

0: के लाल सागर में यमन के तट पर आज एक मालवाहक जहाज पर हमला हुआ। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस UKMTO ने बताया कि यह हमला होदेइदा के पास हुआ, जो ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि ब्रिटेन, कतर, फ्रांस, भारत, बारबाडोस, ब्राजील और अर्जेंटीना के बचाव कर्मियों को उनके अमूल्य योगदान और संकट की इस घड़ी में एकजुटता प्रयासों के प्रति वेनेजुएला सम्मान व्यक्त करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। श्री शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे और कई महत्वपूर्ण पहलुओं का उद्घाटन करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।
1: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल आज से 11 जुलाई तक कर्नाटक के दौरे पर है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करना और प्रमुख योजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन का आकलन करना है। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को विश्व पटल पर विशिष्ट पहचान दिलाने वाली विश्व विख्यात पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन भाई को आज शाम दुर्ग जिले में स्थित उनके पैतृक गांव गनियारी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कलाकारों, साहित्यकारों सहित हजारों प्रशंसकों ने नम आंखों से लोक कला की इस महान विभूति को अंतिम प्रणाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रसार के प्रति तीजन बाई का योगदान अविस्मरणीय रहेगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि तीजन बाई ने भारत की समृद्ध लोक सांस्कृतिक परंपराओं की कालजयी कहानियों को लोगों तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका निधन कला और संस्कृति जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। प्रधानमंत्री मोदी ने वयोवृद्ध जनजातीय नेता और गुजरात के पूर्व वन मंत्री मोहन सिंह राठवा के निधन पर भी शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा में भारी जनभागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किए। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले जत्थे को चंपावत जिले के तनकपुर से रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह तीर्थयात्रा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती है। युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 80वें संस्करण में भाग लिया। श्री सत्य साई बाबा की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री सत्य साई सेवा संगठन के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर मांडविया ने मीडिया से बातचीत में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा मोबाइल स्क्रीन से दूर रहने का आग्रह किया।
2: साइकिलिंग हार्ट को ठीक रखता है और बॉडी को भी फिट रखता है, सोल को भी ठीक रखने का काम करता है। एक साइकिलिंग से पोल्यूशन का सोल्यूशन होता है, अपने स्वयं को फिट रखती है। साइकिलिंग ही ट्रैफिक का भी समाधान

0: वरदान है, क्यों ना हम साइकिलिंग करके अपने स्वयं को फिट रखें और फ्यूल की बचत करें।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यू जर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। उधर महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 11वें ओवर में 3 विकेट पर 70 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी, कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवपुरी में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर पश्चिम एशिया की 6 दिवसीय यात्रा पर दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। ओपेक प्लस ने बाजार स्थिरता में सहयोग के लिए अगले महीने से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। टी20 क्रिकेट विश्व कप में लॉर्ड्स में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला जारी और फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात नॉर्वे का सामना ब्राजील से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: देश में दक्षिण पश्चिम मानसून और तेज हो गया है। कई राज्यों में तेज वर्षा की चेतावनी दी गई है। मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग में कल छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली के कुछ हिस्सों, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी हल्की से तेज बारिश की संभावना है। गुजरात में अगले 7 दिनों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। डांग, नवसारी, वलसाड, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, भावनगर, अमरेली और गीर सोमनाथ में कल बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को अगले 5 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र में तेज वर्षा से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी सहित कोंकण जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मुंबई में आज मूसलाधार बारिश के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 1 घंटे के लिए रनवे संचालन अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा, जिससे उड़ान सेवाएं प्रभावित हुई। बृहन्मुंबई नगर महानगर पालिका के अनुसार दिन भर में पेड़ गिरने की 64 घटनाएं तथा दीवार या मकान के कुछ हिस्से गिरने की 8 घटनाएं दर्ज की गई। भारी बारिश के कारण ठाणे और पालघर जिलों में भी व्यापक नुकसान हुआ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र की कई नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रक्षा विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी। यह संयंत्र अडानी समूह द्वारा लगभग 2,500 करोड़ रुपए के निवेश से बनाया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज शिवपुरी के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। श्री सिंधिया ने कहा कि ये परियोजना जिले को औद्योगिक विकास, रक्षा उत्पादन और आत्मनिर्भर भारत के सपने से जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवपुरी के मेहनती युवाओं के बनाए हथियार और मिसाइल भारतीय सेना को मजबूत करेंगी। ये कारखाना राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर स्थित पाली गाँव में बनेगा। इसमें गोला बारूद, उच्च तकनीक वाले हथियार और मिसाइल का उत्पादन किया जाएगा। अडानी समूह के निदेशक जीत अडानी ने कहा कि समूह वर्ष 2030 तक मध्य प्रदेश में 1,20,000 रोजगार सृजित करेगा। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। सहकारिता मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। मंत्रालय ने बताया कि यह समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान सहित पश्चिम एशिया की अपनी आधिकारिक यात्रा शुरू की। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर दोहा पहुंचे, जहां उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अस्सानी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, निवेश, संपर्क, सुरक्षा और जनसंबंधों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा में भारी जन भागीदारी दर्ज की गई है। तीर्थयात्रा के पहले 3 दिनों में 56,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा मंदिर में दर्शन किया। आज रिकॉर्ड 24,648 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना ब्राजील से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 1:30 बजे से न्यूजर्सी में खेला जाएगा। वहीं कल सुबह 5:30 बजे इंग्लैंड का मुकाबला मैक्सिको से होगा। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 151 रन का लक्ष्य दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने ताजा समाचार मिलने तक 15वें ओवर में 2 विकेट पर 138 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla.